सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे सुबह 9 बजे हमारे अगले एक खास और रंगों से भरे कार्यक्रम घूमर की ओर, क्योंकि साथियों राजस्थान की संस्कृति में घूमर केवल एक लोक नृत्य नहीं बल्कि नारी की खुशी, सम्मान और परंपरा का सुंदर प्रतीक है। इसी परंपरा और नारी शक्ति को समर्पित है हमारा यह विशेष कार्यक्रम घूमर, जहां महिलाओं से जुड़ी बातें, उनकी प्रतिभा, अनुभव और जीवन की प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाई जाती है। इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 9:30 पर। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा मीठा शहद था उसका, परंतु वो गोकुल में टिक नहीं पाया। उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीघ्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया। और दूसरा व्यापारी मिर्च का था। पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मथुरा में उसकी धाक जम गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, कितने उत्तम विचार हैं उनके और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है, इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुंद, आपके कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमर वावारा मर हित्ता किसान भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो आप सब हांभळी रिया हो आपणो सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहे हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गए हो कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक नवे शो ने हाते मनीषा बोन आज कार्यक्रम में भाई बोनो थे की आपड़ा बातचीत विषय है कि आज जो गर्मी है ये वत्ते सही है एवं में आपड़ा जे किसान भाई बोन है मेरा ने खेतर में तो घना काना काम तो रहे से
0: होवे
1: तो अनि गर्मी में अगर ये खेतर में काम करें तो लू तक की खुद ने हाथे बचावी ने राखी सकी इन्हें बारा में आज आपड़े बात करेंगे।
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિશે માટે આપણે કિસાન ભાઈ બોનો કતે ઘણા આકાને વાતે રેંગા અબર હામળા આગે ને મોરે કર આપણી વાતે
1: હોવે તો ભાઈન બોનો આપ હંબર તરેસુ આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગર રેડિયો

बहन बोनोना गीत बाद आप सभी नो फेरे स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम की बहन बोनो गीत थकी पहले विषय बताड़ियो हतु कि आपड़े किसान भाई बोन जी गर्मी ये साली रही है अणा माय खुद ने लूख थी बचाव हेते करी। अंजलि बोन आपण देखो हां कि गर्मी ना मौसम में खेतम काम करू आपड़े किसान भाई बोनो बलते मजबूरी रहे है। खूब ज्यादा तड़को ने गर्म वायरन कारण वनन शरीर में जे रहे पानी ने कमी थई जाए है। एण कदे चक्कर आवा मंडी जी ही सर दर्द थाए है उल्टी जेवी समस्या ही भी खूब ज्यादा वधी जाए है। अपन देखो हां कि कणा वगत लू नी जे समस्या है वे आपड़े व्यक्ति नी जान भी लई शके है। अत्र आपड़े किसान भाई बहनों ने गर्मियों में विशेष सावधानी रखवी है। सही जान

0: इस गीत हाथे हमें कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूटा। आशा कर रहा हूँ की ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक की जीव भी बातें रही है या आपने गमी होगा
1: होवे।
0: तो आपने हमारो आज नुआ कार्यक्रम क्यूँ लगे एने बारा में आप राय सूझो मैंने आली सको अमार अना पता माते।
1: होवे भाइयों बहनों, अमारु पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारु पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बलदे आप अमने फोन करी शको अमारे अना फोन नंबर माते। अमारु फोन नंबर है 9460051234।
0: तो भाइयों बहनों, फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में अनस टाइम माते एक नवीन हाते तारुदी।
1: राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम, राम।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय, यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि नींद की कमी बच्चों पर क्या असर डालती है। हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन में खाना, खेल और पढ़ाई जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है पर्याप्त और अच्छी नींद। श्रोता साथियों, नींद केवल आराम करने का समय नहीं बल्कि शरीर और दिमाग को ऊर्जा देने की प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल,
0: खासकर बच्चों के लिए जिनका

0: की नींद को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, कई बच्चे देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। यह स्थिति धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य और व्यवहार पर असर डालती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक श्रोता साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना दोस्तों को हम पहले यहाँ मनोरंजन इस गीत के साथ करवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के विषय के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं नींद की कमी बच्चों पर क्या असर डालती है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बच्चा देर रात तक मोबाइल देखता है, समय पर नहीं सोता है, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं होती?
1: जी हाँ।
0: लेकिन इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम कभी नहीं देखते अंजलि जी। हम देखते हैं कि नींद सिर्फ आराम करना नहीं होता, यह शरीर और दिमाग के लिए एक रिचार्ज सिस्टम की तरह काम करती है। दोस्तों, बच्चों के लिए नींद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे बच्चों के शरीर की वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल,
0: दिमाग नई चीजों को समझता है और याद करता है। साथ ही बच्चों का इम्यून सिस्टम भी इससे मजबूत होता है, साथ ही वे भावनात्मक रूप से संतुलन बना पाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि नींद के दौरान जो बच्चे होते हैं उनके शरीर की मरम्मत होती है।
0: बिल्कुल,
1: दिमाग नई चीजों को व्यवस्थित करता है, याददाश्त मजबूत होती है, शरीर की वृद्धि में भी मदद मिलती है। यानी नींद बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की आधारशिला है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जब बच्चा पूरी नींद नहीं लेता तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, बच्चा जल्दी थक जाता है, खेलने और दौड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि नींद की कमी से पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, चीजें जल्दी भूलने लगते हैं। इसका सीधा असर पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: कम नींद लेने वाले बच्चे कशिश जल्दी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पर रो सकते हैं और व्यवहार में बदलाव दिखाते हैं।
0: जी हाँ,
1: चिंता बढ़ सकती है, उदासी या तनाव महसूस हो सकता है, आत्मविश्वास कम हो सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि नींद पूरी न होने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी कम हो सकती है, जिससे बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जब बच्चा पर्याप्त समय तक नहीं सोता, बार बार जागता है या फिर सोने का समय उसका अनियमित होता है, तो उससे नींद की कमी कहा जा सकता है। अगर बात करें श्रोता साथियों, तो पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर भी बच्चों की नींद का असर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि जो बच्चा अगर अच्छी नींद नहीं लेगा अंजलि जी, तो वह चीजें जल्दी भूल जाएगा, नई जानकारी समझने में उसे परेशानी होगी और परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन वह नहीं कर पाएगा।
1: जी हाँ,
0: यानी कि दोस्तों, नींद की कमी सीधे सीधे बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही व्यवहार में बदलाव को लेकर अगर बात करें, तो नींद पूरी न होने पर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा करने लगता है और कह सकते हैं कि रोना धोना भी बच्चे का बढ़ जाता है।
1: जी हाँ,
0: कई बार माता पिता इसे जिद समझ लेते हैं, जबकि असली कारण नींद की कमी होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि किस तरीके से नींद की कमी बच्चों के जीवन पर असर डालती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि नींद की कमी से भूख का संतुलन बिगड़ सकता है, ज्यादा या गलत खाना खाने की आदत हो सकती है। बच्चों के शरीर की वृद्धि हार्मोन्स नींद के दौरान सक्रिय होते हैं।
0: जी हाँ,
1: नींद कम होगी तो विकास प्रभावित हो सकता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, नींद की कमी के कई कारण हैं। हम देखते हैं कि देर रात तक मोबाइल, टीवी देखना, गेम खेलना, सोने जागने का समय तय नहीं होना, होमवर्क या दबाव, देर रात तक खाना और दिन में ज्यादा सोना, इन सभी कारणों की वजह से बच्चों को नींद कम आती है। आगे हम जानेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को अच्छी नींद कैसे दिलाएं, लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि नींद की कमी बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास पर कैसे असर डालती है, साथ ही हम इसके कारणों को जान पाए। अब यही बात करें कि बच्चों को अच्छी नींद हम कैसे दिला सकते हैं। तो दोस्तों, हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत हमें डालनी है।
1: बिल्कुल,
0: सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल और टीवी हमें बंद कर देना है।
1: जी हाँ।
0: कमरे में शांति और आरामदायक माहौल हमें रखना है। बच्चों को कहानी सुनाना, हल्की बातचीत और प्रार्थना, ऐसी सारी चीजें हम अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ रात का खाना हल्का और जल्दी पचे वैसा होना चाहिए।
1: जी
0: बच्चों
1: हाँ।
0: को हम शारीरिक गतिविधियां कराएं जिससे उन्हें नींद अच्छी आती है। श्रोता साथियों, यहाँ पर माँ बाप की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दें, खुद भी सही आदत अपनाएं और बच्चों को डांटने की बजाय समझाएं और नींद को प्राथमिकता दें, ताकि बच्चे ये समझ पाएं कि किस तरीके से नींद उनके लिए महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ अंजलि जी, अगर दोस्तों इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें, तो अंजलि जी, एक छोटा सा शहर था, वहीं रहता था 12 साल का एक बच्चा विवान।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, ऐसे तो विवान बड़ा होशियार था, क्लास में हमेशा अव्वल आता था, टीचर उसकी तारीफें करते थकते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया और वही बदलाव उसकी खुशियों को छीनने लगा। साथियों, हम देखते हैं कि विवान के पापा ने उसे एक स्मार्टफोन दिलाया
0: जी हाँ।
1: ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। शुरुआत श्रोता साथियों तब तक तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के बाद गेम खेलने लगा, वह वीडियो देखने लगा, सोशल मीडिया में खो गया। अब उसकी रातें मोबाइल के साथ ही बीतने लगी। पहले जो बच्चा रात को 9 बजे सो जाता था, अब वह 12 बजे तक भी नहीं सोता था और जागता रहता था। सुबह उठने में उसे काफी मुश्किल होने लगी, स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्लास में नींद आने लगी और टीचर की बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों, विवान को लगा कि ये तो बस थोड़ी सी थकान है, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: कुछ ही हफ्तों में दोस्तों उसके टेस्ट में नंबर कम आने लगे, होमवर्क अधूरा रहने लगा और ध्यान भी भटकने लगा। एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछा, विवान क्या बात है, तुम पहले जैसे नहीं रहे? विवान के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, टीचर की बात सुनकर उसे बड़ा बुरा लगा। दोस्तों, उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा, अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, दोस्तों से झगड़ने लगा और घर में भी चिड़चिड़ा रहने लगा।
0: जी,
1: माँ ने भी उससे प्यार से पूछा कि बेटा सब ठीक है ना? विवान चुप रहा साथियों, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
0: जी हाँ।
1: स्कूल में एक महत्वपूर्ण परीक्षा हुई, विवान रात भर मोबाइल चलाता रहा और परीक्षा के दिन उसका सिर दर्द कर रहा था, आंखें भारी थी और दिमाग बिल्कुल खाली सा लग रहा था।
0: जी जी।
1: वह पेपर ठीक से नहीं कर पाया और जब रिजल्ट आया साथियों, तो पहली बार वह फेल हो गया। विवान को बहुत बुरा लगा, वह कमरे में बैठकर रो रहा था कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया।
0: बिल्कुल।
1: मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? फिर उसकी माँ ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा समस्या तुम नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। माँ ने उसे बताया, अंजलि जी, कि देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद की कमी और थका हुआ दिमाग, ये सब उसकी परेशानी का कारण था।
0: बिल्कुल।
1: विवान को पहली बार समझ में आया कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि हमारी ताकत है। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल समय पर बंद करना शुरू कर दिया। रात 10 बजे वह सोने लगा, सुबह ताजगी के साथ उठने लगा और कुछ ही दिनों में दोस्तों उसका ध्यान फिर से बढ़ने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा और व्यवहार भी शांत हो गया। और हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद विवान फिर से क्लास में अव्वल आने लगा। टीचर ने मुस्कुराकर कहा कि अब मेरा पुराना विवान वापस आ गया। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साथियों, टीचर मैंने सिर्फ एक चीज सुधारी है और वो है मेरी नींद। हम कह सकते हैं अंजलि जी कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि नींद की कमी धीरे धीरे बच्चों की किस प्रकार से खुशियाँ, आत्मविश्वास और भविष्य को छीन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सही समय पर सुधरने से सब कुछ साथियों वापस पाया जा सकता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा तो है, नींद कम भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यह सोच बहुत गलत है। नींद की कमी धीरे धीरे बच्चों के पूरे विकास को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: समाज में जागरूकता जरूरी है, अच्छी नींद, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भविष्य। नींद बच्चों के जीवन का एक अनोखा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी हाँ।
0: केवल आराम का समय नहीं बल्कि शरीर, दिमाग और संतुलन रखने का आधार है। यदि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती तो इसका असर उनके स्वास्थ्य, व्यवहार, पढ़ाई और विकास पर साफ दिखाई देता है, जैसा हमने कहानी के माध्यम से जाना। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों की नींद को उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी उनके भोजन, पढ़ाई को देते हैं।
1: जी हाँ।
0: सही आदतें, नियमित दिनचर्या और परिवार का सहयोग बच्चों को बेहतर नींद और बेहतर जीवन दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों की नींद छीनकर हम उनका भविष्य कमजोर करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी नींद दे ताकि वे पूरी तरह खिल सकें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो इस तरीके से जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें हुई और हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए समय पर सोना और समय पर जागना उनके भविष्य को किस प्रकार से विकसित कर सकता है और नींद उनके लिए कितनी जरूरी है। तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं मन की ट्यूटन के

0: हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले इस गीत के साथ मनोरंजन हम करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि विषय बताया था कि मन के टूटन के दौर में थोड़ा ठहर जाना जरूरी है। दोस्तों क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी आपके जीवन में है? भीड़ में भी खुद को आप अकेला पाते हैं, कभी दिल इतना भारी हो जाता है कि आंसू भी कम लगने लगते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आज के इस कार्यक्रम का सफर जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज हम भागेंगे नहीं बल्कि रुकेंगे खुद को समझने के लिए और खुद को संभालने के लिए। क्योंकि जागृति जी हम देखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर हमें जिंदगी ला देती है जहाँ सब कुछ बिखरता हुआ हमें लगता है, मन हमारा भारी हो जाता है, सपने धुंधले पड़ जाते हैं और हम खुद से ही दूर होते जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे युवाओं की जिंदगी में तो यह दौर काफी आम माना जाता है क्योंकि कभी रिश्तों में दरार देखी जाती है, कभी करियर का दबाव देखा जाता है, तो कभी खुद से उम्मीदों का बोझ उन पर रहता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में दोस्तों हम अक्सर भागने लगते हैं खुद से, हालात से और सच से भी।
1: बिल्कुल कशिश, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं मन की टूटन के दौर में थोड़ा ठहर जाए श्रोताओं, लेकिन सवाल ये है कि जब मन टूटने लगे तब हमें क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल,
1: क्या हमें उसी बहाव में बह जाना चाहिए कशिश, या थोड़ा ठहर कर खुद को संभालना चाहिए?
0: जी हाँ,
1: मन की टूटन वो अवस्था होती है जब व्यक्ति अंदर से निराश हो जाता है, हताश होता है, कमजोर हो जाता है। ये तब होता है जब हमारी उम्मीदें, इच्छाएं या विश्वास टूट जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे किसी प्रिय का साथ छूट जाना, मेहनत के बाद भी असफलता मिलना, या अपने ही लोगों से धोखा मिलना। मन के टूटन का असर सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं श्रोताओं, ये हमारे व्यवहार, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति नजरिए को बदलता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा गया है कि जब उम्मीदें टूटती है तब मन भी बिखरता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, और दोस्तों मन की टूटन सिर्फ दिल टूटना नहीं होता बल्कि ये एक ऐसी स्थिति होती है जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं, किसी चीज में आपको खुशी नहीं मिलती है और खुद पर भरोसा आपका कम होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: और जीवन का अर्थ धुंधला लगने लगता है। श्रोता साथियों, ये एक भावनात्मक थकान है जो धीरे धीरे आपके मन को कमजोर कर देती है। ऐसे में युवाओं के मन की टूटन के ढेर सारे कारण हो सकते हैं जागृति जी, जैसे कि ज्यादा अपेक्षाएं। दोस्तों घर और समाज की कुछ उम्मीदें होती हैं हम युवाओं से, ऐसे में जब हम उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते हैं तो हमारा मन इससे टूटने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही तुलना की आदत भी एक कारण हो सकता है जागृति जी, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें वर्तमान में तुलना का आदि बना दिया है। हम हर किसी को देखकर अपनी तुलना करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही टूटते रिश्ते और अधूरी भावनाएं भी कारण है जिसके कारण हमारे रिश्तों में अस्थिरता आ रही है दोस्तों, और हम लोगों के बीच में रहकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि जब मन टूटता है जागृति जी तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है, निर्णय लेने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, गुस्सा या उदासी बढ़ जाती है और कभी कभी जीवन से हार मानने का भी मन करता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दोस्तों यही वो समय है जब हमें सबसे ज्यादा ठहरने की जरूरत होती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो हमारा मन घबराने लगता है, हम जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं जो अक्सर गलत होते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी होता है थोड़ा ठहरना।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ठहरना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। जब हम ठहरते हैं तो हमें सोचने का मौका मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: हम अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ठहरना हमें सिखाता है श्रोताओं कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य रखना होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से बातें कर ही रहे हैं तो ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ हम करवाए साथियों को।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ,

0: करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि मन की टूटन के दूर में थोड़ा ठहर जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि श्रोता साथियों, ठहरने के बहुत सारे लाभ है, बहुत सारा महत्व भी है। जैसे कि जब हम ठहरते हैं कशिश, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, घबराहट और बेचैनी कम हो जाती है। शांत मन से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, हम समस्याओं को सही तरीके से समझ पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जब हम खुद को समय देते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी लौटने लगता है। ठहराव हमें ये मौका देता है श्रोताओं कि हम अपनी गलतियों से सीखकर एक नई शुरुआत करें।
1: बिल्कुल,
0: सबसे पहले श्रोता साथियों, आप खुद से बात करें, अपने मन की बातों को समझें, ये जानने की कोशिश करें कि आपको क्या तकलीफ दे रहा है। रोना, दुखी होना या कमजोर महसूस करना गलत नहीं है श्रोताओं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें।
1: बिल्कुल,
0: अपने करीबी लोगों से आप बात करिए, अपने दोस्तों, परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ अपनी बात को साझा करिए। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा जरूर होता है कशिश, बस हमें कोशिश करने की जरूरत है श्रोताओं कि हम उस अच्छाई को कैसे पहचाने।
1: जी हाँ,
0: जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, खुद को समय दे और धीरे धीरे आगे बढ़े।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ठहरना, हार मानना कभी नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि ठहरने का सही मतलब है खुद को संभालना। दोस्तों, जब हम ठहरते हैं तो हम अपने विचारों को समझ पाते हैं, अपनी भावनाओं को पहचान पाते हैं और गलत फैसलों से भी बच सकते हैं जागृति जी। साथ ही खुद को फिर से खड़ा करने की हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ठहरना एक मानसिक विराम है जो हमें टूटने से बचाता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि जागृति जी, एक लड़का था जो हर चीज में अच्छा था, लेकिन असफलता उसे तोड़ देती थी।
0: बिल्कुल,
1: और हम ये देखते हैं कि ऐसा ही हुआ कि उसे किसी चीज में असफलता मिली और वो अंदर ही अंदर टूट गया। दोस्तों, वो खुद को कमरे में बंद कर चुका था और उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा कि बेटा, जब रास्ता साफ ना दिखे तो दौड़ना नहीं बल्कि ठहर जाना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ठहराव में ही रास्ता दिखता है। दोस्तों, उसने पहली बार खुद को समय दिया और धीरे धीरे वह फिर से आगे बढ़ने लगा। हम कह सकते हैं कि ठहराव जो है वो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों, टूटना कमजोरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: हर कोई इस दौर से गुजरता है, ऐसे में मदद मांगना ठीक है और सबसे जरूरी ये सोचना है कि आप अकेले नहीं है साथियों।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि धैर्य वो शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ठहराव और धैर्य एक दूसरे के पूरक है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते, हम हर स्थिति को समझकर आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती श्रोताओं, कुछ चीजों के लिए समय और धैर्य दोनों की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल,
0: ठहराव का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं या हार मान लें। ठहराव का मतलब है कुछ समय के लिए रुककर खुद को समझना और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना। ठहराव हमें सिखाता है कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हमें मजबूत भी बनाता है और जीवन की सच्चाई से परिचित भी करता है। इसलिए कहा भी गया है कशिश कि ठहराव अंत नहीं, नई शुरुआत का संकेत है।
1: जी हाँ,
0: आज के युवा साथियों में सबसे बड़ी समस्या है अधीरता। वे हर चीज जल्दी चाहते हैं कशिश।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब उन्हें असफलता मिलती है तो वे टूट जाते हैं। श्रोताओं, आपको ये समझना होगा कि जीवन एक दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: अगर कभी मन टूटे तो खुद को समय दीजिए, ठहरे और फिर से उठ खड़े हो जाइए, क्योंकि गिरना हार नहीं, गिरकर उठना ही असली जीत है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि युवा साथियों, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, कभी हम जीतेंगे कभी हम सीखेंगे साथियों।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब भी मन टूटे तो खुद को खोना नहीं है बल्कि खुद को समय देना है। याद रखें कि ठहरना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर दोस्तों आज आपका मन भारी है तो खुद को थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक करने की जल्दी मत कीजिए, बस खुद के साथ बैठिए, क्योंकि हर टूटा हुआ इंसान अगर थोड़ा सा ठहर जाए जागृति जी, तो वह फिर से जुड़ सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, मन की टूटन जीवन का एक हिस्सा है लेकिन ये अंत नहीं है, ये हमें मजबूत बनने का मौका जरूर देती है।
1: बिल्कुल,
0: जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराए नहीं, थोड़ा ठहर जाइए, खुद को समझे और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए जब मन टूटे तो खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, बस थोड़ा ठहरूंगा, ताकि और मजबूत बनकर आगे बढ़ सकूं। कहा गया है कशिश कि मन की टूटन कोई हार नहीं बल्कि एक संकेत है।
1: बिल्कुल,
0: समय आ गया है खुद को समझने का, खुद से मिलने का और खुद को फिर से करने का।
1: बिल्कुल,
0: जीवन की राह में ठोकरें आना तय है श्रोताओं, लेकिन हर ठोकर हमें एक

0: हैं,
1: बिल्कुल
0: अपने घावों को भर पाते हैं और एक नई शुरुआत कर पाते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, जो व्यक्ति टूट कर भी खुद को संभाल लेता है कशिश, वही असली होता है। इसीलिए जब भी मन कमजोर पड़े खुद से कहिए, मैं अभी रुका हूं।

0: रहेगा।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और जैसा कि हमने जाना है कि जब भी मन टूटता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि वह पल होता है जब हमें खुद को ज्यादा संभालने की आवश्यकता होती है। तो श्रोता साथियों, बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे यहाँ पर एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जान

0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के

0: व्यवस्था हमारे समय की अनिवार्य आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: आज की तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहाँ तकनीक, औद्योगिकरण और बाजारवाद का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है अंजलि, वहीं हमारी संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा बहुत जरूरी हो जाती है। ये केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं है श्रोताओं, बल्कि हमारी पहचान, विरासत और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एक सशक्त साधन है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: प्रौद्योगिकी विकास का नहीं है बल्कि पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजते हुए आगे बढ़ने का भी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही वह जगह है जहां सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये केवल कला, परंपरा और संस्कृति का संरक्षण नहीं करती बल्कि इन्हें आर्थिक शक्ति में बदल कर समाज और देश के विकास में योगदान देती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो किसी भी समाज की संस्कृति, परंपराओं, कला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य, त्योहारों और जीवन शैली पर आधारित होती है। जैसे कि लोक कला और हस्तशिल्प, जैसे मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, कपड़े, ये सभी पारंपरिक संगीत, नृत्य, स्थानीय भोजन, खान पान और सांस्कृतिक पर्यटन, ये सभी हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। आज के समय में इनकी आवश्यकता और ज्यादा हो गई है क्योंकि श्रोता साथियों, रोजगार के नए अवसर यानी कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुलती है।
1: बिल्कुल
0: कारीगर, कलाकार, बुनकर, लोक गायक को काम मिलता है, युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़कर रोजगार का अवसर भी मिलता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। ये हमारी भाषा, कला, परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली का समग्र रूप है।
0: बिल्कुल
1: जब यही संस्कृति आर्थिक गतिविधियों से जुड़ती है तो वो संस्कृति अर्थव्यवस्था का रूप लेती है। आज के समय में जब वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक एकरूपता बढ़ रही है, तब अपनी सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखना और उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बहुत जरूरी हो गया है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में विविधता की कोई कमी नहीं है। हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग कला है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में कलाएं धीरे धीरे खत्म हो रही है।
0: जी जी
1: हम देख रहे हैं अंजलि कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से इन कलाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब सरकार और समाज मिलकर इन कलाओं को बाजार उपलब्ध कराते हैं तो कलाकारों को सम्मान और आर्थिक स्थिरता दोनों मिलती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि तेजी से बदलती दुनिया में हमारी कई परंपराएं खत्म होने की कगार पर हैं। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, जैसा कि जागृति जी आपने कहा कि उन्हें जीवित रखने का माध्यम बनती है।

0: करते हैं, इससे देश की आय में वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जब हम अपनी संस्कृति पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देते हैं तो लोकल फॉर वोकल की भावना मजबूत होती है, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम होती है और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलता है।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि आज के श्रोता केवल नौकरी ही नहीं कर रहे बल्कि नए अवसरों की तलाश में भी है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था उन्हें स्टार्टअप, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और सांस्कृतिक उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती है। श्रोताओं, आज हम देख रहे हैं कि युवा अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचा सकते हैं। हालांकि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के कई लाभ हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं अंजलि।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि बाजार की कमी, आधुनिक तकनीक की जानकारी का अभाव, सरकार और समाज का कम सहयोग, नकली और सस्ते उत्पादों की प्रतिस्पर्धा।
0: बिल्कुल।
1: इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है।
0: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा।

0: बनारसी सिल्क, गुजरात का कच्छ कढ़ाई, मध्य प्रदेश की गुड़ कला। श्रोता साथियों, यदि इन सबको सही तरीके से बाजार से जोड़ा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे दोस्तों कि सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण का विस्तार होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम

0: सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था श्रोता साथियों केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। यह हमें बताती है जागृति जी कि विकास का रास्ता केवल मशीनों फैक्ट्रियों से नहीं है बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ भी बनता है।
1: बिल्कुल,
0: जब

0: व्यवस्था इसी संतुलन की सबसे बड़ी कड़ी है।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, किस तरह सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हमारे समय की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है को लेकर ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से भारत में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का महत्व है, यही कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हमें यह समझने का अवसर देती है कि विकास केवल भौतिक संसाधन की वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, परंपराओं और सामाजिक जुड़ाव से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी संस्कृति को आर्थिक शक्ति में बदलते हैं तो हम एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जागृति जी, जो आत्मसम्मान, रोजगार और सामाजिक संतुलन तीनों को साथ लेकर चलता है।
1: बिल्कुल,
0: आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जड़ों को बोझ नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखें। यदि सही दिशा, सहयोग और जागरूकता मिले तो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था न केवल स्थानीय स्तर पर बदलाव ला सकती है बल्कि श्रोता साथियों, देश को वैश्विक मंच और एक अलग पहचान भी दिला सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन भी है। जब लोग किसी स्थान की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को देखने जाते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि राजस्थान की लोक संस्कृति, बनारस की गंगा आरती या दक्षिण भारत के मंदिर, ये सभी सांस्कृतिक पर्यटन के उदाहरण हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको चुनौतियों के बारे में भी गीत से पहले अवगत करवाया था, यही आपको समाधान और सुझाव के बारे में बताएं तो स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे देनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाना चाहिए अंजलि। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में संस्कृति के महत्व को सिखाया जाना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: सरकार द्वारा योजना और नीतियों को मजबूत करना होगा। श्रोताओं, आपसे यही कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि हमारे समय की जरूरत है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और साथ ही आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
0: जी,
1: अगर हम अपनी संस्कृति को बचाते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बना सके तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत होगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जब दुनिया तेजी से एक जैसी होती जा रही है, तब अपनी अलग पहचान बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यह हमें सिखाती है कि प्रगति का अर्थ अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं बल्कि उन्हें नए रूप में अपनाना है। यह केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। यदि समाज, सरकार और युवा मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो यह क्षेत्र आने वाले समय में सबसे सशक्त विकास मॉडल बन सकता है। छोटे छोटे प्रयास जैसे कि स्थानीय उत्पाद को अपनाना, पारंपरिक कौशल को सीखना और बढ़ावा देना धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन की नींव रखता है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हमें यह रास्ता दिलाती है कि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें हमारी परंपराएं जीवित रहें, लोग आत्मनिर्भर बने, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। यही वह दिशा है दोस्तों, जो आज की जरूरत भी है और भविष्य की मजबूती भी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था कोई पुरानी सोच नहीं है बल्कि भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। यह हमें सिखाती है कि विकास केवल इमारतों और मशीनों से नहीं होता बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करने से भी होता है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूलकर केवल आधुनिकता के पीछे भागेंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे, लेकिन अगर हम अपनी परंपराओं को अपनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे तो हम न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने देश को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज जरूरत है सोच बदलने की श्रोता, संस्कृति को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझने की, कला को शौक नहीं बल्कि सम्मानजनक रोजगार मानने की, और अपनी विरासत को केवल यादों में नहीं बल्कि बाजार और भविष्य में स्थान देने की। क्योंकि याद रखिए श्रोता, जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही समय की आंधियों में मजबूती से खड़ा रहता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि अपनी संस्कृति को हमें बचाना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी ताकत बनाना है। यही हमारे समय की सच्ची जरूरत है और यही हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, हमें आगे बढ़ते हुए ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को केवल स्मृति बनाकर न रखें बल्कि उसे जीवंत बनाएं, उसे रोजमर्रा के जीवन और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाएं, तभी हम एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जहां विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी सुरक्षित और मजबूत बनी रहे, और यही सच्चे अर्थों में समृद्ध समाज की पहचान होगी।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम

0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
0: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
3: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
2: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मारू नाम गिल्ली है, ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी में तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदो, ने मने कीधो कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहे भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीसी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना हुदी तने केवल मानो दूधस पीवू है।
4: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि परेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। श्रोता साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल बहुत जरूरी हो गया, वो क्या है ये मैं आपको बताऊं तो, क्या हम काम, परिवार और खुद, इन तीनों को बराबर समय दे पा रहे हैं? हम देखते हैं कि कई लोग काम में इतने उलझ जाते हैं कि परिवार पीछे छूट जाता है। कुछ लोग परिवार की जिम्मेदारी में खुद को भूल जाते हैं, और कई बार सबसे ज्यादा अनदेखी खुद की होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि जिंदगी में संतुलन कैसे बनाया जाए। बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि क्या हम काम, परिवार और खुद इन तीनों में बराबर संतुलन दे पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग परिवार को समय देते हैं तो काम छूट जाता है, काम को समय देते हैं तो परिवार छूट जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों ही चीजों को समय देते देते इंसान खुद को भूल जाता है। तो आज कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हम जिंदगी में संतुलन को कैसे बनाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, संतुलन

इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना संतुलन के जीवन बोझ लगने लगता है। अगर सिर्फ काम होगा तो थकान बढ़ने लग जाएगी, और अगर सिर्फ जिम्मेदारियां होंगी तो मन दबाव में रहेगा, और अगर खुद के लिए समय नहीं होगा तो खुशी और शांति दोनों ही कम होने लगेगी। इसलिए दोस्तों, संतुलन जीवन को आसान नहीं बनाता, लेकिन उसे बिखरने से जरूर बचाता है। हर काम जरूरी है, लेकिन हर काम एक साथ जरूरी नहीं। जरा सोचिए श्रोता साथियों, आज सबसे जरूरी क्या है? परिवार, काम या खुद के लिए थोड़ा समय? जो जरूरी है पहले उसे आपको जगह देनी है। यानी कि हमें यह समझना होगा कि तीनों में से हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो हमें प्राथमिकताएं तय करनी है। उसके पास श्रोता साथियों बात आती है समय का छोटा बंटवारा करने की, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए संतुलन हमेशा बड़े बदलाव से नहीं आता, छोटी आदतों से आता है। दिन में 20 मिनट परिवार के साथ हमें समय बिताना है, 15 मिनट सिर्फ अपने लिए हमें देना है, और काम के बाद थोड़ी मानसिक दूरी, यानी कि छोटे समय का सही उपयोग बड़ा असर लाता है। श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि कई बार हम घर पर होते हैं पर मन कहीं और होता है। श्रोता साथियों सिर्फ साथ बैठना ही साथ होना नहीं है, बात करना, सुनना, जुड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि परिवार को हमेशा ज्यादा समय नहीं सही समय चाहिए होता है। कहना चाहूंगी दोस्तों कि खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ की बात नहीं होती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, पहले सबका ध्यान रखूं फिर अपना। लेकिन साथियों अगर आप खुद ही थक जाएंगे तो दूसरों को कैसे संभालेंगे? थोड़ा आराम कीजिए, थोड़े अपने शौक पूरे कीजिए और थोड़े अकेले समय बिताइए, क्योंकि ये जरूरी है, विलासिता नहीं। इसी के साथ हमें अपने जीवन में ना कहना भी सीखना होगा, क्योंकि हर जिम्मेदारी उठाना जरूरी नहीं है, हर उम्मीद पूरी करना भी जरूरी नहीं है। जहाँ जरूरत हो श्रोता साथियों सम्मान के साथ ना कहें, यही संतुलन बचाता है। कहना चाहूंगी दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपने संतुलन का फैसला मत कीजिए। हर घर अलग होता है, हर परिस्थिति अलग है, अपनी जरूरत के हिसाब से हमें तालमेल बनाना है। संतुलन समय मिलने से नहीं दोस्तों, समय निकालने से बनता है। जो खुद को समय देता है वही दूसरों को भी बेहतर दे पाता है। इसलिए दोस्तों काम जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन खुद भी जरूरी है। जिंदगी में संतुलन कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है साथियों। यदि रोज की छोटी समझ, छोटे फैसलों और सही प्राथमिकताओं से इसे बनाया जा सकता है। काम, परिवार और खुद, इनमें से किसी एक को चुनना समाधान नहीं है, इन तीनों के बीच तालमेल बनाना ही असली समझदारी है। तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है कि इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना क्यों जरूरी है और कैसे हम बना सकते हैं, ये बातें मैं आगे अवश्य करूंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि इससे पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान ही लिया कि किस तरीके से जिंदगी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। यही दोस्तों आपको कहना चाहूंगी कि संतुलन का मतलब सबको बराबर समय देना नहीं, बल्कि सही समय पर सही ध्यान देना है। आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले शब्द हैं व्यस्तता, दबाव और जिम्मेदारी और समय की कमी। लोग सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं, समाज की अपेक्षाएं निभाते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है कि क्या इन सब के बीच जीवन संतुलित है? क्या हम काम, परिवार और खुद इन तीनों को सही जगह दे पा रहे हैं? दोस्तों, कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से हर काम जरूरी लग सकता है, पर हर काम समान जरूरी नहीं होता। प्राथमिकताएं तय करना संतुलन का पहला कदम है। हमें खुद से पूछना है कि अभी सबसे जरूरी क्या है। क्या मैं हर जरूरी चीज खुद ही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? क्या कुछ चीजें टाली या बांटी जा सकती है? प्राथमिकताएं तय करने से ऊर्जा बिखरती नहीं है दोस्तों, केंद्रित होती है। ध्यान रखें, व्यस्त होना, उपयोगी होना दोनों अलग बातें होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि काम जरूरी है, सम्मान देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन दोस्तों जब काम ही पूरी पहचान बन जाए तब समस्या शुरू होती है। इसलिए काम का एक तय अंत समय रखें। हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। घर को हमेशा कार्यस्थल न बनने दें। घर लौटते ही 10 मिनट हमें खुद को देना है। हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम हमारी सोच को नियंत्रित रख सकते हैं और तीनों के बीच में संतुलन बना सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि बहुत सी बार महिलाओं पर दोहरा तीहरा बोझ होता है, काम, घर और देखभाल का। इसलिए संतुलन की चर्चा में यह जरूरी है कि सहयोग की संस्कृति बने, श्रम की साझेदारी हो, महिलाओं का निजी समय सम्मान पाए। संतुलन व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक प्रश्न भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि संतुलन का मतलब सब कुछ आदर्श। ऐसा नहीं है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी परिवार, कभी खुद को ज्यादा समय चाहिए होगा। संतुलन स्थिर तस्वीर नहीं, बदलता हुआ तालमेल है। इसलिए संतुलन जड़ नहीं, जीवित प्रक्रिया है। जिंदगी में संतुलन बनाना कोई एक तकनीक नहीं है दोस्तों, एक दृष्टिकोण है। यह समझ से बनता है, तुलना छोड़ने से बनता है, सीमाएं तय करने से बनता है और खुद को महत्व देने से बनता है। काम जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वह आधार देता है। परिवार जरूरी है, क्योंकि वह संबंध देता है। खुद जरूरी है, क्योंकि वही केंद्र है। अगर केंद्र ही थक जाए तो बाकी सब धीरे धीरे प्रभावित होगा। इसलिए संतुलन का मतलब जीवन को इस तरह जीना कि उपलब्धि भी हो, अपनापन भी हो और भीतर शांति भी हो। संतुलन समय मिलने से नहीं, समझ बनने से आता है। काम जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। परिवार को उपस्थिति चाहिए, सिर्फ उपलब्धता नहीं। खुद का ध्यान रखना जिम्मेदारी है, कोई स्वार्थ नहीं। और जहाँ संतुलन है वही टिकाऊ खुशी है। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पाए कि हम काम, परिवार और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाएं, क्योंकि अक्सर बहुत सी बार इन सारी चीजों को लेकर घर परिवार के लोग, दोस्त लोग और हम खुद एक दूसरे से सवाल करते रहते हैं और कहते रहते हैं, क्या हमारे पास हमारे लिए समय नहीं है? परिवार वाले बोलते हैं आपके पास हमारे लिए समय नहीं है। और काम हमारा जो है वो भी हमसे कभी कभी सवाल करने लग जाता है कि काम के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे में हमें इन सारी चीजों में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम खुद के लिए जरूरी हैं, हमारे साथ हमारा परिवार और काम भी हमारे लिए जरूरी है। और तीनों में बनाया गया संतुलन हमारे जीवन की खुशहाली की नींव है। इसलिए आप समय सीमा तय करते हुए, प्राथमिकताएं तय करते हुए अपने जीवन में इन सारी चीजों का संतुलन बनाकर रखें, ताकि आपका जो जीवन है वो हमेशा खुशी से भरा रहे। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नए नए प्रेरणादायक विषयों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
2: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में, जैसा कि रोजाना हम नए नए विषयों पर आपसे बातचीत करते हैं, तो आज का एक नया विषय चुन रहा है जल संरक्षण का महत्व। जैसे कि मनीषा और रीना कहते हैं कि जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
1: बिल्कुल,
2: पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना तो संभव नहीं है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, खेती, उद्योग, पर्यावरण, ये सभी, इन सभी का अस्तित्व जल पर ही निर्भर करता है। यदि जल नहीं रहेगा श्रोताओं तो जीवन भी नहीं रहेगा।
1: जी हाँ।
2: आज विज्ञान और तकनीक के इस आधुनिक युग में इंसान ने बहुत सारी प्रगति की है, लेकिन जल की कमी एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
2: जी,
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
2: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं जल संरक्षण के महत्व को लेकर। रीना और जागृति जी, हम देखते हैं कि जल प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है। श्रोता साथियों, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और जीवित प्राणी के लिए जल के बिना वो जीवित नहीं रह सकते।
1: बिल्कुल,
0: हमारे दैनिक जीवन का प्रत्येक कार्य श्रोता साथियों जल पर निर्भर करता है। पीने, भोजन करने, खाना बनाने, खेती करने, सफाई करने और उपयोग चलाने के लिए श्रोता साथियों बिजली उत्पादन जैसे इन कार्यों के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए श्रोता साथियों कहा जा सकता है कि जल ही हमारा जीवन है। पृथ्वी पर लगभग श्रोता साथियों 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें श्रोता साथियों अधिकांश जो जल है वो खारा है, जो समुद्र में पाया जाता है। पीने योग्य मीठा जल श्रोता साथियों बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जागृति जी, आज हम देखते हैं कि जल संकट गंभीर समस्या बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: अनेक क्षेत्रों में लोग पानी पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। साथियों, यदि समय रहते जल का संरक्षण पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भयंकर यह संकट बन सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा,
2: जल का उपयोग पहले से कई गुना अधिक बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
2: इतनी तेजी से जल का उपयोग बढ़ रहा है, इतनी तेजी से जल का संरक्षण भी जागृति बढ़ रहा है।
1: जी,
2: आज दुनिया कई हिस्सों में जल का संगठन बढ़ रहा है।
0: जी हाँ
1: बिल्कुल रीना, क्योंकि कहा गया है कि जल बचाओ जीवन बचाओ और यही भविष्य का सच्चा आधार है। श्रोताओं, जैसे कि पहले लोग नदियां, तालाब, कुओं के जल को कभी समाप्त नहीं होने देते थे, यानी कि खत्म नहीं होने देते थे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन आज हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या, बहुत ज्यादा उपयोग, प्रदूषण और लापरवाही ने जल संकट को गंभीर बना दिया है। कई शहर और गाँव में लोग पीने के पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: भविष्य में संकट और भी भयानक हो सकता है, इसीलिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। रीना और मनीषा,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। आज हमें कोई भी कार्य करना होता है तो हम बिना पानी के नहीं कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: चाहे नहाना हो, ब्रश करना हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, तो हम बिना जल के कुछ भी नहीं कर सकते। भोजन के बिना कुछ दिन हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना तो जीवन असंभव है।
0: जी हाँ।
1: हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल से बना हुआ है।
0: जी हाँ।
1: शरीर के सही संचालन के लिए शुद्ध जल जरूरी होता है, और पानी केवल पीने के लिए ही नहीं बल्कि नहाने, खाना बनाने, जैसा कि अभी मैंने बताया था, खेती करने, बिजली उत्पादन करने, उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि किसान की फसल जल पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होती है।
0: हाँ।
1: और यदि समय पर वर्षा न हो या सिंचाई के लिए पानी न मिले तो खेती भी नष्ट हो जाती है। जल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में श्रोता साथियों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम देखते हैं मनीषा और रीना कि नदियां, झीलें और समुद्र पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखते हैं।
0: जी हाँ।
1: पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए जल चाहिए। यदि जल की कमी होगी तो हरियाली समाप्त होने लगेगी और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि वर्षा के पानी को एकत्रित करके हम भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: घरों की छतों पर वर्षा का श्रोता साथियों टंकियों में जमा कर सकते हैं हम, और साथ ही इससे भूजल स्तर भी बढ़ता है। जागृति जी और रीना, हम देखते हैं कि हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं और मिट्टी की नमी को भी बनाए रखते हैं। श्रोता साथियों, हमें केवल आवश्यकता अनुसार ही जल का उपयोग करना चाहिए। दांत साफ करते समय हमें नल बंद करके रखना चाहिए। बाल्टी में स्नान करते समय पानी को हमें व्यर्थ नहीं बहाना है, उसको भी हमें बचाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो व्यर्थ पानी है श्रोता साथियों, वो तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर हम नहाते टाइम पानी को बचाते हैं तो वही पानी हम अपने पेड़ पौधों को भी घर के पीछे उनको डाल सकते हैं, तो उनसे भी पानी को हम बचा सकते हैं।
2: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। अगर हम बात करें कि जल के महत्व के बारे में, तो हम कह सकते हैं जल मानव जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल,
2: लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है।
1: आपने
2: बताया था, लेकिन पीने योग्य जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उपलब्ध मीठे जल का सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जागृति जी, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा जल से उत्पन्न होता है।
0: बिल्कुल,
2: स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त जल आवश्यक है। जल की कमी से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी जल से निर्भर करते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जल संकट की समस्या से जूझ रही है मनीष, और ना कई क्षेत्रों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। लोग जरूरत से अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, उद्योग भूजल अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो नदियां और तालाबों में गंदगी और रासायनिक पदार्थ डालने से जल प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी और प्लास्टिक नदियों को दूषित कर रहा है। इससे पीने योग्य पानी की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन भी जल संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। कभी बहुत अधिक बारिश होती है तो कभी बिल्कुल नहीं होती है। इससे सूखा और बाढ़ जैसी समस्या बढ़ रही है। गांव में महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। यदि समय रहते श्रोताओं जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी बातचीत की ओर। जिस तरह से बातें कर रहे थे जल संरक्षण की आवश्यकता पर, अगर ये हम बात करें जल संकट की वर्तमान स्थिति के बारे में, तो मनीषा जी आज में राज्यों में गर्मियों के समय पानी पीने की भारी कमी होती जा रही है।
1: जी हाँ,
0: लोग पानी की बर्बादी करते हैं,
1: नलों को खुला छोड़ देना, अत्यधिक पानी का उपयोग करना और जल स्रोत को प्रदूषित। आज दुनिया के कई देश जल संकट का सामना कर रहे हैं, साथ ही भारत में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, कहीं कहना आम बात हो गई है। दूसरी ओर गांव में लोग एक एक बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, भले जहाँ कुछ फीट खुदाई में पानी मिल जाता था, वहीं अब सैकड़ों फीट नीचे तक बोरिंग करनी पड़ती है।
2: इसका मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं कि जल का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध मीठा जल बहुत सीमित है। समुद्र का पानी खारा होता है, जिसे सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। जल संरक्षण से भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि आज हम पानी बचाएंगे, तभी कल हमारे बच्चों को पर्याप्त जल मिल पाएगा। श्रोताओं, जल संरक्षण आर्थिक रूप से लाभदायक है मनीषा, क्योंकि पानी की कमी होने पर सरकार को नई योजना और जल परियोजनाओं पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। यदि लोग स्वयं जल बचाने लगे तो ये खर्च कम हो सकता है।
1: जी
2: हम कह सकते हैं कि जल संरक्षण पर्यावरण की रक्षा के लिए भी जरूरी है। जब हम पानी बचाते हैं तो नदियाँ, झील, भू जल स्रोत का संतुलन बना रहता है, इससे पशु पक्षियों और वनस्पतियों को भी जीवन मिलता है।
3: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि सरकार जल संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। नदियों की सफाई, तालाबों का पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना श्रोता साथियों, और जल अभियानों को चलाने के लिए कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम श्रोता साथियों देखते हैं कि जल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जैसे कि सरकार को चाहिए कि वह जल प्रदूषण को रोकने वाले उद्योगों को कठोर नियम लागू करे, साथ ही लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करे और शिक्षा का भी प्रचार करे। श्रोता साथियों, विद्यार्थी जीवन के भविष्य होते हैं, वे जल संरक्षण के महत्व में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। विद्यार्थी अपने घर, परिवार और समाज के लोगों को भी जल बचाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
2: बिल्कुल
3: श्रोता साथियों, हमें पानी की बर्बादी रोकनी है, इसके लिए हमें पेड़ लगाने हैं, जल संरक्षण संबंधित हमें अभियान चलाने हैं, और साथ ही श्रोता साथियों हमें स्वच्छता बनाए रखनी है। जागृति जी, यदि विद्यार्थी बचपन से ही जल बचाने की आदत डालेंगी तो भविष्य और समाज दोनों जागरूक बनेंगे। साथ ही श्रोता साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संरक्षण आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
3: हम देखते हैं कि गांवों में तालाब, कुएं और बावड़ियां जल के मुख्य स्रोत होते हैं। इनकी सफाई और संरक्षण श्रोता साथियों आवश्यक है। किसानों को कम पानी वाली फसलों को अपनाना चाहिए और साथ ही आधुनिक सिंचाई तकनीकी को भी अपनाना चाहिए।
2: बिल्कुल मनीषा, जैसे कि जल संरक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें वर्षा जल संचयन करना होगा। बारिश के पानी को इकट्ठा करके भविष्य में उपयोग करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। जैसे कि घरों की छतों पर गिरने वाले पानी की टंकियों में जमा किया जा सकता है, इससे भूजल स्तर बढ़ता है और पानी की कमी दूर होती है। श्रोता साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बरसात होती है, तब हम जो पानी व्यर्थ जाता है वो हम नीचे बाल्टी या कोई ड्रम लगा दे तो पानी बच जाएगा, तो हम जल का संचयन कर सकते हैं। नल है वो खुला छोड़ना, जरूरत से ज्यादा पानी को बहाना और लापरवाही से पानी खर्च करना, ये सब गलत आदतें होती है। जितनी लापरवाही आज हम करेंगे, उतनी ही हमें आने वाली भविष्य में हमें इन सब चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि श्रोताओं, हम यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमें धीरे धीरे ये चीजें, अच्छी आदतें अपनानी होगी। अगर हमें लग रहा है कि पानी की कम आवश्यकता है, तो हम पानी की कम आवश्यकता में ही उस काम को चला लें। ये नहीं कि पानी है तो हम उसका मतलब कि उपयोग करे जा रहे पानी व्यर्थ जा रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं होता। यानी कि हम कहना चाहेंगे कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं बचा पाएंगे। अगर हमें उन्हें सुरक्षित भविष्य देना है, तो आज से ही हमें इन आदतों को अपनाना होगा। जैसे कि हमें कहीं नल खुला मिल रहा है तो हमें उसे बंद करना होगा। सार्वजनिक जगह पर हम जा रहे हैं तो पानी का सीमित उपयोग करना होगा। कहीं पानी बहता हुआ मिल रहा है तो उसे उसके लिए हमें कोई भी उपयोग करना होगा। अगर हम खेतों में पानी पिला रहे हैं तो वहां पे भी हम पाइप वगैरह अच्छे से लगा कर खेतों में पानी पिला सकते हैं। तो इस तरह से मनीषा और रीना, हम कुछ पानी का सीमित उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी अच्छा भविष्य मिल सकता है, उनको पानी मिल सकता है। क्योंकि अगर पानी को इस तरह से व्यर्थ किया जाएगा तो आने वाले कल में हम पानी को नहीं बचा पाएंगे।
3: बिल्कुल जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जल प्रकृति की अमूल्य धरोहर है।
2: बिल्कुल
3: इसके बिना जीवन संभव नहीं है साथियों। वर्तमान समय में बढ़ता जल संकट मानव समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।
2: बिल्कुल
3: यदि आज हमने जल का सही उपयोग नहीं किया साथियों तो आने वाला समय हमारे लिए अत्यधिक कठिन होगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है जागृति जी कि वह एक एक बूंद को महत्व दे और जल के संरक्षण की आदतों को अपनाए। श्रोता साथियों हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, जल स्रोतों को दूषित नहीं करेंगे और साथ ही दूसरों को भी जल बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। सामूहिक प्रयासों से श्रोता साथियों जल संकट की समस्याओं से हम बच सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहा जाता है कि जल है तो कल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा आपने सही कहा और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि पेड़ वर्षा लाने में मदद करते हैं, भूमि में जल को सुरक्षित रखते हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से जल संरक्षण में सहायता मिलती है।
3: जी हाँ
2: यानी कि श्रोताओं कहने का तात्पर्य यही कि हमें पेड़ लगाने होंगे, जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी हमारी हरियाली होगी और उन पेड़ों को हमें सही समय पर पानी भी देना है। नदियों और तालाबों में कचरा प्लास्टिक और रसायन नहीं डालने चाहिए। उद्योगों को गंदे पानी को साफ करके ही बाहर छोड़ना चाहिए। खेतों में ड्रिप सिंचाई और हम कह सकते हैं कि इन सब तकनीकों का उपयोग करने से पानी की बचत होती है और जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी सबसे महत्वपूर्ण बात, तब तक जल संरक्षण सफल नहीं हो सकता। इसीलिए श्रोताओं स्कूल गांवों शहरों में जल बचाने के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं और जैसा कि हम वागर रेडियो 90.8 FM के माध्यम से आपको बार बार भी अवगत करवाते हैं कि हमें पानी को बचाना है। अगर पानी नहीं बचेगा तो हमारा आने वाला कल भी खतरे में पड़ सकता है।
3: बिल्कुल जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले लोग केवल पारंपरिक तरीकों से जल बचाने का प्रयास करते थे लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि नई तकनीकों की सहायता से भी जल अधिक सही और सीमित उपयोग किया जा रहा
2: बिल्कुल,
3: है।
2: बिल्कुल
3: वैज्ञानिक उपकरणों आधुनिक प्रणालियों के कारण श्रोता साथियों जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है। हम देखते हैं कि आज कई स्थानों पर ऐसी मशीनें और तकनीकी विकसित की गई है जो कम पानी से अधिक कार्य करने में सक्षम होती है।
2: बिल्कुल
3: खेतों में टपक सिंचाई जैसा कि आपने बताया था। साथ ही श्रोता साथियों फसलों से जुड़े हमें कई जानकारियां रखनी चाहिए जिसमें कम पानी का उपयोग हो। साथ ही श्रोता साथियों इससे पानी की बचत होगी और फसलें भी अच्छी होंगी। इसी प्रकार श्रोता साथियों शहरों में भी हमें जल संकट को बचाना चाहिए।
2: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि कहा गया है कि पानी की हर बूंद अगर हम बचाते हैं तो हम हमारा भविष्य उज्जवल बनाते हैं।
3: जी
2: जैसे कि हमारे युवा साथी विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। यदि बच्चे बचपन से ही पानी बचाने की आदत डाले तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
3: जी हाँ
2: स्कूल में जल संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। विद्यार्थी अपने घर में ही परिवार के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। वे नल बंद रखने, पानी की बर्बादी रोकने और पेड़ लगाने जैसे छोटे छोटे कार्यों में बड़ा योगदान दे सकते हैं। पर ये श्रोताओं कि हम घर में ही अपने बच्चों को ऐसी आदतें अगर सिखाएंगे तो उनमें ये आदतें विकसित होंगी और वो बाहर जाकर भी दूसरे लोगों को बताएंगे तो धीरे धीरे जो चेन है वो चलती जाएगी और हम पानी को बचा सकते हैं।
3: जी बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि हमारी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से जल संरक्षण को लेकर बातें जारी है और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
2: बिल्कुल
3: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
2: बिल्कुल

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी जल संरक्षण के महत्व को लेकर, हमने जाना था कि विद्यार्थी और युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, साथ ही हम जान रहे थे जल संरक्षण के उपाय के बारे में और इसी के साथ जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सारी बातें हमारी गीत से पहले आपके साथ हुई थी। यही अगर सरकार और समाज की जिम्मेदारी को लेकर मनीषा और रीना हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो जल संरक्षण केवल सरकार का काम नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। सरकार को नई जल योजनाएं बनानी होगी, तालाबों नदियों की सफाई करनी होगी तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। ये कार्य सरकार तो कर ही रही है लेकिन समाज की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी बचाएगा तो लाखों लीटर पानी बचाया जा सकता है। गाँव में पुराने तालाबों और कुओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है। शहरों में पानी की पाइपलाइन से होने वाले रिसाव को रोकना होगा, क्योंकि कहा गया है कि सरकार और जनता का साथ जल संरक्षण हो सकता है तो विकास की बात बन सकती है। जैसे कि भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब जल सुरक्षित होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में जल के लिए संघर्ष और युद्ध तक हो सकते हैं, इसीलिए हमें अभी से सावधान होने की जरूरत है। जो यदि आज हम जल संरक्षण को अपनी आदत बना ले तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देंगी। मनीषा और रीना, जैसे कि जल बचाने का कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मानवता की सेवा है। हर बूंद अनमोल है और जिस दिन ये बात हर व्यक्ति समझ जाएगा उस दिन जल संकट काफी हद तक समाप्त हो जाएगा।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में जल को अत्यधिक पवित्र माना गया है।
0: बिल्कुल,
1: प्राचीन समय से ही भारत में नदियाँ, तालाब और कुएं का विशेष महत्व रहा है। लोग नदियों को माता के सम्मान देते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और नर्मदा जैसी नदियाँ केवल जल की स्रोत ही नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का भी प्रतीक है। साथ ही हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में लोग जल संरक्षण के महत्व को भली भांति समझते थे।
0: बिल्कुल,
1: गाँव में बड़े बड़े तालाब और बावड़ियां बनाई जाती थी जहाँ वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। साथियों, हम देखते हैं जागृति जी के राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में भी लोग जल को बचाने के लिए अद्भुत विकसित अपनी कला एक रखते हैं। वहाँ छोटी छोटी जल संरचनाओं के माध्यम से वर्षा के जल को सुरक्षित रखा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही साथियों हम देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में भी जल का महत्व बताया गया है। पूजा पाठ, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों में जल को विशेष उपयोग माना जाता है। जल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक भी कहा जाता है। साथ ही साथियों हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति हमें प्रकृति को सम्मान करने का सिखाती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम अपनी परंपराओं और संस्कारों को अपनाते हैं साथियों और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो श्रोता साथियों हम पानी को कई हद तक बचा सकते हैं और उसके प्रति हम सम्मान भी व्यक्त कर सकते हैं।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि जल समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जल की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें।
0: जी हाँ,
2: आज यदि हम पानी की बर्बादी करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को जल का संकट का सामना करना पड़ेगा। हमें भविष्य के बच्चों के लिए जल बचाकर रखना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल रीना, आपने सही कहा कि हमें भविष्य में बच्चों के लिए जल को बचाकर रखना होगा, क्योंकि जल प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: जी हाँ,
0: आज जल संकट पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है मनीषा। यदि हमने समय रहते जल संरक्षण नहीं किया श्रोताओं तो भविष्य बहुत कठिन हो सकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में पानी की बचत करनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। वर्षा जल संचयन अपनाना होगा, पेड़ लगाने होंगे और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: सरकार, समाज और हर नागरिक को मिलकर इस दिशा में कार्य करने होंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, जल केवल आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। इसीलिए हमें हर बूंद की कीमत को समझना होगा। कहा गया है कि जल की रक्षा करना धर्म हमारा है, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। आज अगर पानी बचाएंगे मनीषा और रीना, तभी हम मुस्कुराएंगे और आने वाला हर दम हमारे लिए अच्छा बनेगा।
1: बिल्कुल जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जल संकट केवल पर्यावरण समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक समस्या भी बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: जब किसी क्षेत्र में श्रोता साथियों पानी की कमी होती है तो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई गांवों में महिलाएं और बच्चे दूर दूर तक पानी लेने जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, इसका कारण है श्रम और पानी की कमी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि पानी की कमी के कारण लोग आपसी विवाद भी बढ़ने लगे हैं। कई बार जल स्रोतों को लेकर झगड़े और संघर्ष भी उत्पन्न हो जाते हैं। साथियों, किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: शहरों में जल संकट के कारण को अगर जागृति जी हम देखें तो हम देखते हैं कि महंगाई के दाम है वो भी बढ़

0: गए हैं, पानी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। श्रोता साथियों, गरीब परिवारों के लिए यह बहुत कठिन होता है। जल की कमी के कारण स्वच्छता भी प्रभावित हो रही है और बीमारियां भी फैलने लगी है।
1: जी हाँ,
0: साथ ही हम देखते हैं कि विद्यालयों और अस्पतालों में भी पानी की गंभीर समस्या बन चुकी है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और रोगियों को उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। साथ ही श्रोता साथियों, इसी प्रकार जल संकट समाज के प्रत्येक वर्गों को प्रभावित कर रहा है।
2: बिल्कुल,
0: इसीलिए समाज के सभी लोगों को मिलकर जल संरक्षण के लिए कार्य करने चाहिए।
1: जी हाँ मनीषा, और एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम जल संरक्षण के बारे में बताएंगे। जैसे कि एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। बूढ़े माता पिता थे, पत्नी सीता और दो बच्चे मोहन और गुड़िया। रमेश मेहनती था, लेकिन एक आदत उसकी बहुत खराब थी कि वो पानी की कभी कदर ही नहीं करता था। उसके घर में नल खुला रह जाता था, खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी बहाया जाता था और गाँव के तालाब की सफाई की तरफ से भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
2: बिल्कुल,
1: गांव के लोग भी यही सोचते थे कि पानी तो प्रकृति का उपहार है, ये कभी खत्म नहीं होगा। बरसात के दिनों में गांव के तालाब भर जाते थे, बच्चे उनमें खेलते थे, महिलाएं कपड़े धोती थी और किसान खेतों में खूब पानी बहाते।
2: बिल्कुल,
1: ये नहीं सोचता था कि एक दिन यहाँ यही पानी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे गांव में बारिश कम होने लगी। पहले जो तालाब हमेशा भरे रहते थे, अब उनमें दरारें दिखने लग गई थी। श्रोताओं, कुओं का पानी जो था वो नीचे जाने लगा था। खेतों में फसलें जो थी वो सूखने लगी थी। एक दिन रमेश सुबह खेत पर गया, उसने देखा कि उसकी गेहूं की फसल मुरझी हुई है।
2: बिल्कुल,
1: वो जल्दी से मोटर चलाने गया, लेकिन ट्यूबवेल से पानी ही नहीं निकला। उसके चेहरे पर चिंता छा गई। वो भागकर गांव के पुराने कुएं पर पहुंचा, लेकिन वहां भी केवल थोड़ी सी नमी बची थी।
2: जी हाँ,
1: गांव के लोग बाल्टी और घड़े लेकर लाइन में खड़े थे। महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने लगी। श्रोता, छोटे बच्चे प्यास से परेशान रहने लगे। उस रात मनीषा और रीना, रमेश पहली बार बहुत बेचैन था। उसकी बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, बेटा जब पानी था तब हमने उसकी कीमत नहीं समझी। प्रकृति हमेशा देती है, लेकिन जब इंसान लालच और लापरवाही करता है तब प्रकृति भी रुट जाती है।
2: जी हाँ।
1: रमेश की आंखें झुक गई, उसे याद आने लगा कि कैसे वो नल खुला छोड़ देता था, खेतों में घंटों पानी बहाता था और गांव के तालाब की सफाई को बेकार समझता था।
2: जी बिल्कुल।
1: कुछ दिनों बाद गाँव में एक वृद्ध शिक्षक आए जिनका नाम हरि नारायण था। उन्होंने गांव वालों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। पानी केवल जरूरत नहीं है श्रोताओं, जीवन जीवन है, हमें हर बूंद बचानी होगी। तो गांव वालों ने पहली बार इतनी गंभीरता से मनीषा और रीना ये बात सुनी और हरि नारायण जी ने गांव वालों को वर्षा जल संचयन के बारे में समझाया।
2: जी,
1: उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन में पहुंचाया जाए, गांव के तालाबों की सफाई की जाए, पेड़ लगाया जाए और पानी की बर्बादी को रोका जाए।
2: बिल्कुल।
1: श्रोता, रमेश सबसे पहले आगे आया। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं जल बचाने का काम करूंगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों ने अपने घरों की छतों पर टंकियां लगाई। गांव के युवाओं ने मिलकर सूखे तालाब की सफाई की। श्रोताओं, महिलाओं ने घरों में पानी बचाने की आदतें शुरू की। बच्चों ने स्कूल में जल बचाओ अभियान चलाया। रमेश ने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई शुरू की। पहले जहां घंटों पानी बहता था मनीषा और रीना, अब बूंद बूंद से सिंचाई होने लगी। गाँव के हर घर में ये नियम बना दिया गया कि बिना जरूरत पानी नहीं बहाया जाएगा। एक साल बाद बारिश आई। इस बार गांव का तालाब पानी से भर गया, कुओं का जल स्तर बढ़ने लगा, खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशियां लूट आई। श्रोताओं, रमेश तालाब के किनारे खड़ा था, उसकी आंखों में खुशी थी। तभी उसका बेटा मोहन बोला, पिताजी क्या पानी सच में इतना जरूरी होता है? रमेश मुस्कुराया और बोला, बेटा पानी नहीं तो जीवन नहीं। हमने जब इसकी कीमत नहीं समझी तब प्रकृति ने हमें सबक सिखाया। याद रखना, जल की हर बूंद अनमोल होती है। उस दिन से उस गाँव के पूरे इलाके में मिसाल बन गया रमेश और आसपास के गाँव के लोग वहां आकर जल संरक्षण के तरीके सीखने लगे।
2: बिल्कुल।
1: गांव के प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था श्रोताओं कि जल है तो कल है, हर बूंद में जीवन पल है। और उसके नीचे रमेश ने अपने हाथों से एक पंक्ति लिखी थी, पानी को केवल उपयोग मत करो, उसकी रक्षा भी करो, क्योंकि प्रकृति की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि जल है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और कुछ छोटी मोटी रह गई हैं, वो आगे भी हम जारी रखेंगे।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे जल संरक्षण के महत्व को लेकर, जागृति जी हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार भी है। पृथ्वी पर मौजूद हर जीव का अस्तित्व जल पर ही निर्भर करता है। मनुष्य का दैनिक जीवन, श्रोता साथियों, उनकी आवश्यकता है वो खेती, उद्योग, पर्यावरण और पशु पक्षियों तक जीवित नहीं है। हर क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही श्रोता साथियों हम देखते हैं कि आज जिस प्रकार जल स्रोत लगातार कम हो रहा है, नदियां दूषित हो रही हैं, भूजल स्तर नीचे जा रहा है और कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है जो गंभीर होती जा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा,
0: वह आने वाले समय में श्रोता साथियों एक चेतावनी बन जाएगी हमारे लिए यदि हम अभी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जल संरक्षण का कार्य केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। साथियों घर में नल बंद रखना, आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना, वर्षा जल को संचय करना, पेड़ लगाना, तालाबों और कुओं की सफाई करना, साथ ही जल प्रदूषण को रोकना, जैसे छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जागृति जी और रीना, यदि श्रोता साथियों हर व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी बचाने का संकल्प ले तो करोड़ों लीटर हम पानी सुरक्षित कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों को भी जल के महत्व को बारे में समझाना चाहिए ताकि बच्चे भी पानी को बचाने की आदत को विकसित कर सके।
1: बिल्कुल,
0: विद्यालय, गांवों, शहरों, सामाजिक संस्थाओं, मीडिया के माध्यम से लगातार श्रोता साथियों को जागरूक करना चाहिए। जब समाज में जल के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है साथियों, तभी वास्तविक परिवर्तन आते हैं।
2: जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, जल है तो कल है केवल ये नारा नहीं है साथियों बल्कि जीवन का सत्य है। यदि हम आज जल नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय बहुत ही कठिन हो जाएगा। हमें हर बूंद की कीमत समझनी चाहिए दोस्तों। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है जागृति जी। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा पानी बचाए तो लाखों लीटर पानी की सुरक्षा की जा सकती है। इससे जल पृथ्वी का मूल्य उपहार है दोस्तों, इसका कोई विकल्प नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जल की बढ़ती बर्बादी गंभीर समस्या बन सकती है। यदि समय रहते जल संरक्षण की किया जाए तो इसे भविष्य में काफी संकट आ सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है जैसा कि मनीषा आपने बताया था, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।
1: बिल्कुल रीना, क्योंकि हम देखते हैं कि जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार है और जिस प्रकार शरीर में रक्त का महत्व होता है मनीषा, उसी प्रकार पृथ्वी के लिए जल का महत्व भी होता है। यदि जल समाप्त हो गया तो मानव सभ्यता का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा।
0: जी हां,
1: आज हम जिस तेजी से पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं वह आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जाएगा। श्रोताओं, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और भूजल के अत्यधिक दोहन ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। आज जरूरत इस बात की है कि हम केवल जल संरक्षण की बात ही न करें बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम नल खुला छोड़ते हैं तो जरूरत से अधिक पानी बहाते हैं या जल स्रोतों को गंदा करते हैं। जब हम केवल पानी नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। हमें समझना होगा कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। सूखती नदियां, घटता भूजल स्तर और पानी के लिए बढ़ते संघर्ष इस बात का संकेत है कि यदि अब भी हम नहीं जागे तो भविष्य बहुत कठिन हो सकता है। जल संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक बाल्टी पानी भी बचाए तो करोड़ों लीटर पानी सुरक्षित किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया था, और छोटे छोटे प्रयास से ही बड़े बदलाव आते हैं। जल संचयन अपनाना, पेड़ लगाना, पानी की बर्बादी रोकना और दूसरों को जागरूक करना, ये सारे कदम मिलकर जल संकट को कम करते हैं। श्रोताओं, हमें यह भी याद रखना होगा कि आने वाली पीढ़ियों का भी इस जल पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। यदि हम आज पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो कल हमारे बच्चे प्यासे रह जाएंगे। इसीलिए जल बचाना केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है।
0: बिल्कुल,
1: आज समय की मांग है कि गांव से लेकर शहर तक, विद्यालय से लेकर कार्यालय तक, हर जगह जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जाए। जब समाज का हर व्यक्ति ये संकल्प लेगा मनीषा और रीना कि वो जल की एक एक बूंद की रक्षा करेगा, तभी सच्चे अर्थों में जल संरक्षण सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हमें हमारे मन में ठान लेना होगा कि न पानी व्यर्थ बहाएंगे न किसी को बहाने देंगे। प्रकृति के इस अमूल्य उपहार की रक्षा करेंगे दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि जल बचेगा तभी जीवन बचेगा, प्रकृति बचेगी, मानवता बचेगी और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
2: जी,
1: तो श्रोताओं, जल की हर बूंद में जीवन की आस छिपी है, धरती की हर मुस्कान उसी के पास छिपी है। आज अगर पानी की कीमत समझ जाएंगे हम, तो आने वाले कल को खुशहाल बना जाएंगे हम। इसलिए आओ मिलकर ये अभियान चलाएं कि जल बचाए और जीवन बचाए। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहुत सारी बातें हुई, हमने जाना जल संरक्षण के महत्व के बारे में कि किस तरह से हमें जल को बचाना है, जल हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है और आने वाले भविष्य के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रकृति हर समय हमें हर तरह की चेतावनी दे रही है। कभी सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। तो हमें आज से ये संकल्प लेना होगा कि पानी को हमें बचाना होगा, बच्चों को हमें ये संस्कार देने होंगे, युवाओं को जागरूक होना होगा और जो घर में रहते हैं वृद्ध, उन्हें भी इन बात का ध्यान रखना होगा कि पानी हमें किस तरह से बचाना है। समय समय पर वागर रेडियो 90.8 एफएम के माध्यम से हम इन सब विषयों को लेकर आपसे बातचीत करते हैं और हमारा मकसद यही है कि हम इन सब चीजों में अपनी भागीदारी को अच्छे से निभाएं, हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रखे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मनीषा और रीना हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखना होगा, समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को हमारा पता बताना चाहेंगे, ताकि उनको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 एफएम, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
3: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल को
3: और आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है दोस्तों 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है साथियों हमारे बीच, पंटपुर से सिटी से है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। गीत के बोले दोस्तों पहली बार मोहब्बत की है। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को। पंटपुर सिटी से है जाकिर मुलानी, सोमिया, सुभान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। जिला भागपत से है आसिर अली खान, मोमित नाज, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हम हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच मंजू कटीला से ही। फिल्म का नाम है दादा, गीत के बोले दोस्तों दिल के टुकड़े टुकड़े करके। इस गीत के साथ दोस्तों जुड़ना चाह रहे कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संताना एमपी से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। राजस्थान से है रमेशचंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जोधपुर राजस्थान से है रमेशचंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच महाराष्ट्र से ही। गीत के बोले लीला को भूल जाएंगे। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे संतोष जी, सुनैना जी, सुकन्या जी, सविता जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को। कश्मीर से पीरजादा मिराज उद्दीन, नजमा उद्दीन, केसर उद्दीन जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुधर शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। आर्य नगर कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगल, मोरसी जंगल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगल, नंदन जंगल जी, सुकरी कला से अमित जंगल, कुशल जंगल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजल जंगल जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच जिला हरियाणा से ही। फिल्म का नाम है राजा, गीत के बोले झुकी झुकी नजर तेरी। दोस्तों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह जी, लवप्रीत, कंवरजीत जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशवाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल जी, कुमारी दुर्गेश्वरी जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। ग्वालियर से सुरेश खुराना, पिप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्य आरव, मेघा साक्षी, आशीष अर्जुन और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तपुरी गोस्वामी, लक्ष्मणी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच शिवाजी नगर खड़वा से ही। गीत के बोले दोस्तों, दुनिया हसीनों का मेला। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी। और इस गीत के अनुरोध करता है साथियों, गश डुंडवारा से है शमशुल कमर राही, शाइन फातिमा, आनंद खान, फेनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

का नाम है मोहरा, गीत के बोले दोस्तों टिप टिप बरसा पानी। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे हैं अब्दुल्ला संतावासी जी, और भी दोस्त सुनना चाह रहे साथियों हमारे इसी गीत को। बोरखेड़ा से ही विनत मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह जी, दिशा कुशल जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों नेहरू चौक पोडन से है डॉक्टर सूरज यादव, अनिता जादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनल जादव, बेबी सिया जादव, जलाना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओमनाथ यादव, सुभाष यादव, चंदन यादव, एकनाथ यादव, संगीता यादव जी, और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। छत्तीसगढ़ से बबल साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच छत्तीसगढ़ से है। फिल्म का नाम है शान। गीत के बोले दोस्तों, प्यार करने वाले प्यार करते हैं। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे फिनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयाश कुमार चंदन जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। भिवानी से है कृष्णा मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा, कुणाल मेरा जी, और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच कलानौर से ही, गीत के बोले दोस्तों सात समुंदर पार। और इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किन्नर शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार, रुक्मणी जी, साहिल भारती बंगेल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों महाराष्ट्र से पीए नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इगले, राजकुमार जी, आशीष मोहेंकर जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों जिला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल, रजित कुमार, जयप्रकाश जी, प्रियंका, मंत, गुरुकृत, गुरुशब्द सिंह, राहुल जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों श्रीरामपुर महाराष्ट्र से है नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद शेख, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिकलाई मुजावर, जैन मुजावर जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों गश डिंडवारा से है मोहम्मद कली अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद यान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद याशमी शमशुल कमर राही जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है तपस्या। गीत के बोल हैं दो पक्षी दो तिनके। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं

मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या मुस्कान, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र जी डांगी। इस गीत की अनुरोध करता है दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल सी, सुधर नृत्यन, संदीप नृत्यन, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईश्वरप्रीत शर्मा, हरिपाल जी कौर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जरूर वरुण महाराष्ट्र सी, बाबा साहेब वाड़ोदी, मीनाक्षी चर्पी। इस गीत की अनुरोध करता है सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दो पक्षी दो तिनके। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर महलोत से। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है। इस गीत की फरमाइश करते हैं डॉक्टर रमेश कुमार झुंझुरिया, गीता रानी झुंझुरिया, गंदीप झुंझुरिया, गुरजू झुंझुरिया, गुड्डू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, दंजी बिट्टू, पीपी कुतलेश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसू से राजू मिलगाने, बबीता मिलगाने, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपा जी शाहू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार जी वर्मा, सोनम जी वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। सहारनपुरा से जुड़ रहे हैं जोन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पर्ल डिकिस्टो, विलेज डिकिस्टो। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, गीत के बोल हैं रंग महल के 10 दरवाजे। इस गीत की फरमाइश करता है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयू सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू जी सिक्का। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से यासिन हासिम, बेगम हासिम, तोसिफ तोइनूर कलीम अंसारी जी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सप्रिल जी धाड़े। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। नवाशहर पंजाब से जुड़ रहे हैं गंगादीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वानी जी थांदी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरमित शाहू। बिहार से जुड़ रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्या, अभ्यनंद आर्या, परमानंद आर्या। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। हरिद्वार से जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराब जहां। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं रंग महल के 10 दरवाजे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से, फिल्म का नाम है बेहताब, गीत के बोल हैं जब हम जवा होंगे। इस गीत की फरमाइश करता है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं, एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। झाकोत राजस्थान से जुड़ रही हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज जी अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबांजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं जब हम जवा होंगे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाकट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे जब हम जवां होंगे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है महुआ, गीत के बोल हैं मैं हूँ तेरा गीत गोरी। इस गीत की फरमाइश करता है छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू युक्ता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रतीजी संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित जी आहूजा। डाबकी रोड अकोला से जुड़ रहे हैं शशिलादेवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे गंजद्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है मैं हूँ तेरा गीत गोरी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकट रेडियो 90.8 FM पर और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मैं हूँ तेरा गीत गोरी। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने और आशा भोसले जी ने। श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अस्तुपुरा जिला महू से। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है मज़र अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रिजाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पुणे से पंकज वाडोदी, आर्या वाडोदी, बीटी जी वाडोदी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजुडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अल फेजा, सेवाज जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

सुना गीत के बोल थे मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला सी। फिल्म का नाम है फूल और अंगारे। गीत के बोल हैं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू ने। इस गीत की फरमाइश करता है निसार शर्मा।

नहीं नौसा सलमानी बेबी आलिया आयन बाबू और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाली खेड़ा लाडी खेड़ा शालिनी खेड़ा टिवानशी खेड़ा वाणी खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह श्रीमती महेश्वरी देवी सोनू मोनू राहुल रश्मि प्रियंका सृष्टि बन्नी शौर्या दिनेश जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर शुभम वड़तकर पन्नू वड़तकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने अर्चनाताई गुड़ाने हीरामन शेंडी प्रणय प्रसिद्धि जी। इस गीत के अनुरोध करता है बाबा कुटरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी उत्कर्ष जी चौहान और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश से फारूक शेख शमा शेख साइमा फारूक फराज शेख फराज मुस्कान कालेगांव जाफराबाद से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राज यादव प्रशांत राज यादव सचिन वायाल प्रथमेश देशमुख प्रणाली देशमुख सर्वेज देशमुख कुमारी सानविजी देशमुख। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागुट रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आगरा से। गीत के बोल हैं, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। इस गीत की फरमाइश करता है सुमित चौरासिया, सरिता चौरासिया, वीर चौरासिया कानपुर से जुड़ना चाह रही हैं, श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दियाजी चौरासिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे यूपी से सुरेश चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सुजाता चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू चौरासिया, लल्ला चौरासिया, पिंकू सोराज चौरासिया, शिवा शिवानी जी चौरासिया। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रही हैं शिशपाल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं सहारनपुरा से समेद मशरूम, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सदाम जी, अधिपल्लम। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। दिल्ली से जुड़ रही हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांशी खुराना। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बीबी वेदई जोशी, हंसिका जी जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं श्रीमती जेवंती केवट जी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रही हैं अब्दुल गफा डावर जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9।

0: 0005134।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपकी अपनी साथी

0: सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भरेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ। भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू नाना राको वार। साफ सफाई राखजू खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिए आलड़ी कोरा ने वालोर। रोपो खाओ सब्जिए डीले आवे जोर।
0: सीरो दलियो राबड़ी थूली सोका दाल। पांचवे महीने बाल ने आ खवानो आल।
1: अणी वातनु ध्यान राखो आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि नींद की कमी बच्चों पर क्या असर डालती है। हम देखते हैं कि बच्चों के जीवन में खाना, खेल और पढ़ाई जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है पर्याप्त और अच्छी नींद। श्रोता साथियों, नींद केवल आराम करने का समय नहीं बल्कि शरीर और दिमाग को ऊर्जा देने की प्रक्रिया है।
1: बिल्कुल,
0: खासकर बच्चों के लिए जिनका शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा होता है, नींद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है। आज के समय में मोबाइल, टीवी, अनियमित दिनचर्या और पढ़ाई का दबाव बच्चों की नींद को प्रभावित कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: कई बच्चे देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। यह स्थिति धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य और व्यवहार पर असर डालती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक श्रोता साथियों से हमारी इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना दोस्तों को हम पहले यहाँ मनोरंजन इस गीत के साथ करवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के विषय के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं नींद की कमी बच्चों पर क्या असर डालती है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बच्चा देर रात तक मोबाइल देखता है, समय पर नहीं सोता है, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं होती?
1: जी हाँ।
0: लेकिन इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम कभी नहीं देखते अंजलि जी। हम देखते हैं कि नींद सिर्फ आराम करना नहीं होता, यह शरीर और दिमाग के लिए एक रिचार्ज सिस्टम की तरह काम करती है। दोस्तों, बच्चों के लिए नींद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे बच्चों के शरीर की वृद्धि होती है।
1: बिल्कुल,
0: दिमाग नई चीजों को समझता है और याद करता है। साथ ही बच्चों का इम्यून सिस्टम भी इससे मजबूत होता है, साथ ही वे भावनात्मक रूप से संतुलन बना पाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि नींद के दौरान जो बच्चे होते हैं उनके शरीर की मरम्मत होती है।
0: बिल्कुल,
1: दिमाग नई चीजों को व्यवस्थित करता है, याददाश्त मजबूत होती है, शरीर की वृद्धि में भी मदद मिलती है। यानी नींद बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की आधारशिला है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जब बच्चा पूरी नींद नहीं लेता तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, बच्चा जल्दी थक जाता है, खेलने और दौड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि नींद की कमी से पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, चीजें जल्दी भूलने लगते हैं। इसका सीधा असर पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर पड़ता है।
0: बिल
1: कम नींद लेने वाले बच्चे कशिश जल्दी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पर रो सकते हैं और व्यवहार में बदलाव दिखाते हैं।
0: जी हाँ,
1: चिंता बढ़ सकती है, उदासी या तनाव महसूस हो सकता है, आत्मविश्वास कम हो सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि नींद पूरी न होने से शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत भी कम हो सकती है, जिससे बच्चा बार बार बीमार पड़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जब बच्चा पर्याप्त समय तक नहीं सोता, बार बार जागता है या फिर सोने का समय उसका अनियमित होता है, तो उससे नींद की कमी कहा जा सकता है। अगर बात करें श्रोता साथियों, तो पढ़ाई और सीखने की क्षमता पर भी बच्चों की नींद का असर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि जो बच्चा अगर अच्छी नींद नहीं लेगा अंजलि जी, तो वह चीजें जल्दी भूल जाएगा, नई जानकारी समझने में उसे परेशानी होगी और परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन वह नहीं कर पाएगा।
1: जी हाँ,
0: यानी कि दोस्तों नींद की कमी सीधे सीधे बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही व्यवहार में बदलाव को लेकर अगर बात करें, तो नींद पूरी न होने पर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दी गुस्सा करने लगता है और कह सकते हैं कि रोना धोना भी बच्चे का बढ़ जाता है।
1: जी हाँ,
0: कई बार माता पिता इसे जिद समझ लेते हैं, जबकि असली कारण नींद की कमी होती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि किस तरीके से नींद की कमी बच्चों के जीवन पर असर डालती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि नींद की कमी से भूख का संतुलन बिगड़ सकता है, ज्यादा या गलत खाना खाने की आदत हो सकती है। बच्चों के शरीर की वृद्धि हार्मोन्स नींद के दौरान सक्रिय होते हैं।
0: जी हाँ,
1: नींद कम होगी तो विकास प्रभावित हो सकता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, नींद की कमी के कई कारण हैं। हम देखते हैं कि देर रात तक मोबाइल, टीवी देखना, गेम खेलना, सोने जागने का समय तय नहीं होना, होमवर्क या दबाव, देर रात तक खाना और दिन में ज्यादा सोना, इन सभी कारणों की वजह से बच्चों को नींद कम आती है। आगे हम जानेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को अच्छी नींद कैसे दिलाएं, लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुन

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि नींद की कमी बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास पर कैसे असर डालती है, साथ ही हम इसके कारणों को जान पाए। अब यही बात करें कि बच्चों को अच्छी नींद हम कैसे दिला सकते हैं। तो दोस्तों,

0: हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत हमें डालनी है।
1: बिल्कुल,
0: सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल और टीवी हमें बंद कर देना है।
1: जी हाँ।
0: कमरे में शांति और आरामदायक माहौल हमें रखना है। बच्चों को कहानी सुनाना, हल्की बातचीत और प्रार्थना, ऐसी सारी चीजें हम अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ रात का खाना हल्का और जल्दी पचे वैसा होना चाहिए।
1: जी
0: हाँ। बच्चों को हम शारीरिक गतिविधियां कराएं जिससे उन्हें नींद अच्छी आती है। श्रोता साथियों, यहाँ पर माँ बाप की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान दें, खुद भी सही आदत अपनाएं और बच्चों को डांटने की बजाय समझाएं और नींद को प्राथमिकता दें, ताकि बच्चे ये समझ पाएं कि किस तरीके से नींद उनके लिए महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ अंजलि जी, अगर दोस्तों इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें, तो अंजलि जी, एक छोटा सा शहर था, वहीं रहता था 12 साल का एक बच्चा विवान।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों ऐसे तो विवान बड़ा होशियार था, क्लास में हमेशा अव्वल आता था, टीचर उसकी तारीफें करते थकते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया और वही बदलाव उसकी खुशियों को छीनने लगा। साथियों, हम देखते हैं कि विवान के पापा ने उसे एक स्मार्टफोन दिलाया
0: जी हाँ।
1: ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। शुरुआत श्रोता साथियों तब तक तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के बाद गेम खेलने लगा, वह वीडियो देखने लगा, सोशल मीडिया में खो गया। अब उसकी रातें मोबाइल के साथ ही बीतने लगी। पहले जो बच्चा रात को 9 बजे सो जाता था, अब वह 12 बजे तक भी नहीं सोता था और जागता रहता था। सुबह उठने में उसे काफी मुश्किल होने लगी, स्कूल जाने का मन नहीं करता, क्लास में नींद आने लगी और टीचर की बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों विवान को लगा कि ये तो बस थोड़ी सी थकान है, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: कुछ ही हफ्तों में दोस्तों उसके टेस्ट में नंबर कम आने लगे, होमवर्क अधूरा रहने लगा और ध्यान भी भटकने लगा। एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछा, विवान क्या बात है, तुम पहले जैसे नहीं रहे? विवान के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों टीचर की बात सुनकर उसे बड़ा बुरा लगा। दोस्तों उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा, अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, दोस्तों से झगड़ने लगा और घर में भी चिड़चिड़ा रहने लगा।
0: जी,
1: माँ ने भी उससे प्यार से पूछा कि बेटा सब ठीक है ना? विवान चुप रहा साथियों, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
0: जी हाँ।
1: स्कूल में एक महत्वपूर्ण परीक्षा हुई, विवान रात भर मोबाइल चलाता रहा और परीक्षा के दिन उसका सिर दर्द कर रहा था, आंखें भारी थी और दिमाग बिल्कुल खाली सा लग रहा था।
0: जी जी।
1: वह पेपर ठीक से नहीं कर पाया और जब रिजल्ट आया साथियों, तो पहली बार वह फेल हो गया। विवान को बहुत बुरा लगा, वह कमरे में बैठकर रो रहा था कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया,
0: बिल्कुल
1: मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। फिर उसकी माँ ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा समस्या तुम नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। माँ ने उसे बताया, अंजलि जी, कि देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद की कमी और थका हुआ दिमाग, ये सब उसकी परेशानी का कारण था।
0: बिल्कुल।
1: विवान को पहली बार समझ में आया कि नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि हमारी ताकत है। उस दिन के बाद से उसने मोबाइल समय पर बंद करना शुरू कर दिया। रात 10 बजे वह सोने लगा, सुबह ताजगी के साथ उठने लगा और कुछ ही दिनों में दोस्तों उसका ध्यान फिर से बढ़ने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा और व्यवहार भी शांत हो गया। और हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद विवान फिर से क्लास में अव्वल आने लगा। टीचर ने मुस्कुराकर कहा कि अब मेरा पुराना विवान वापस आ गया। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साथियों टीचर मैंने सिर्फ एक चीज सुधारी है और वो है मेरी नींद। हम कह सकते हैं अंजलि जी की इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि नींद की कमी धीरे धीरे बच्चों की किस प्रकार से खुशियाँ, आत्मविश्वास और भविष्य को छीन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सही समय पर सुधरने से सब कुछ साथियों वापस पाया जा सकता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चा तो है, नींद कम भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यह सोच बहुत गलत है। नींद की कमी धीरे धीरे बच्चों के पूरे विकास को प्रभावित कर सकती है।
1: बिल्कुल।
0: समाज में जागरूकता जरूरी है, अच्छी नींद अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भविष्य। नींद बच्चों के जीवन का एक अनोखा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी हाँ।
0: यह केवल आराम का समय नहीं बल्कि शरीर, दिमाग और संतुलन रखने का आधार है। यदि बच्चों की नींद पूरी नहीं होती तो इसका असर उनके स्वास्थ्य, व्यवहार, पढ़ाई और विकास पर साफ दिखाई देता है, जैसा हमने कहानी के माध्यम से जाना। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों की नींद को उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी उनके भोजन, पढ़ाई को देते हैं।
1: जी हाँ।
0: सही आदतें, नियमित दिनचर्या और परिवार का सहयोग बच्चों को बेहतर नींद और बेहतर जीवन दे सकता है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों की नींद छीनकर हम उनका भविष्य कमजोर करते हैं, इसलिए उन्हें पूरी नींद दे ताकि वे पूरी तरह खिल सकें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। तो इस तरीके से जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें हुई, और हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए समय पर सोना और समय पर जागना उनके भविष्य को किस प्रकार से विकसित कर सकता है और नींद उनके लिए कितनी जरूरी है। तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है और समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
2: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आप एक कारे विचार करियो है कि जईया पेड़ की छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो फिर अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा डंगा, पानी ने बचा डंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: मारू नाम गिल्ली है ने मु मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है। तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदो ने मने कीधो कि 100 महीना होती मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध स पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबरावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना होती तने केवल मानो दूधस पीवू है।
1: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
2: हमरो हमरो हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनू अड़ी सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमर अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमर वावारा मर हित्ता किसान भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो आप सब हमरी रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहे हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गए हो कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने एक नया विषय ने हाते मनीषा बोन आज कार्यक्रम में भाई बोनो थे की आपड़ा बातचीत विषय है कि आज जो गर्मी है ये वत्ते सही है एवं में आपड़ा जे किसान भाई बोन है ने खेतर में तो घना खाना काम कर रहे थे अनि गर्मी में अगर ये खेतर में काम करें तो लू तक खुद ने हते बचावी ने राखी सकी इन्हें बारा में आज आपड़े वाते करंगा।
0: હવે અંજલિ બોન તો આના વિશે માટે આપણે કિસાન ભાઈ બોનો કતે ઘણા કાને વાતે રેંગા અબર હમણા આગે ને મોરે કર આપણી વાતે
1: હોવે તો ભાઈન બોનો આપ હમર તરેસુ આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગર રેડિયો 90.8

0: बहन बोनोना गीत बाद आप सभी नो फेरे स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जिम के बहन बोनो गीत थकी पहले विषय बताड़ियों हतु कि आपड़े किसान भाई बोन जी गर्मी साली रही है अणा मैं खुद ने लू खती बचाव हेते करी। अंजलि बोन आपण देखो हाँ कि गर्मी ना मौसम में खेतम काम करू आपड़े किसान भाई बोनो बोलते मजबूरी रहे है। खूब ज्यादा तड़को ने गर्म वायरा कारण वनन शरीर में जे रहे पानी ने कमी थी जाए एण खे चक्कर आवा मंडी जी सर दर्द थाय उल्टी जीवी समस्या है भी खूब ज्यादा वधी जाए है। अपन देखो हाँ कि कणा वगत लू नी जे समस्या है वे आपड़े व्यक्ति नी जान भी लई शके है। अत्रे आपड़े किसान भाई बहनों ने गर्मियों में विशेष सावधानी राखवी है। सही जानकारी ने उचित उपाय ने लू खती बचाव हेते करी शके वणन हेतन बारे में जानकारी वणन ने राखवी है।
1: हवे मनीषा बोन आपड़े देखो हां के गर्मी नो जो मौसम है ई आवतम में सापड़े जे किसान भाई बहन है एणा ने खेत में काम करवू एणा ने बल्ले कठिन थी सा है। सूरज तेज तेज धूप आपड़े गर्म हवाएं बढ़तू जे तापमान है ये एना शरीर ने कमजोर करी दे है। घणी वक्त आपे देखो हो कि किसान जो है ई घंटों खेतर में काम करे है मेहनत करे है एना ने एहसास नहीं रहतु कि एना नु शरीर जो है ये धीरे धीरे गर्मी नी चपेट में आवी गयो है। लू लागू केवल थकान नहीं बल्कि जानलेवा भी थी सके एटले जरूरी है कि आपणे जे किसान भाई बहन है ये समय रहते सावधानी बरती ने स्वास्थ्य नु ध्यान राखे। आपणे देखो हो कि खेती आपणे देश नी रीढ़ है। किसान जो है ई रातर दाड़ो मेहनत करी ने अन्न उगावे है पर अगर आपणे जे किसान है ई अगर बीमार पड़ी जाएगा तो परिवार ने खेती बेप्रभावित थी सके। खेत नी देखभाल ने हाथे हाथे एना ने एना नु भी ध्यान राखवू घणो जरूरी है। आपणे देखो हो कि जई वक्त गर्मियों में घणी तेज वायरस आले तई वक्त आपणे देखो हो कि आ लू कहवाय है। आ जे लू है ई शरीर ना तापमान ने तेजी तकी वधावी दे है। जिंदगी आप कीधुँ के शरीर में पानी ने कमी थी सा ने आराम ने मलवाने कारण शरीर जो है ई कमजोर पड़ी सके ने मनक बीमार थी सा। बहन बोनो लू लगवाने कारण व्यक्ति ने चक्कर आवे है माथू दुखे है तेज बुखार आवे उल्टी वधारे तड़ लागू कमजोरी घबराहट ने बेहोशी जेवी समस्या भी थी सा तो आ स्थिति एक गंभीर स्थिति कहवाय है। आपणे बहन बोनो ने खुद नु अणी स्थिति थकी बचाव करवो घणो जरूरी है।
0: होवे अंजलि बोन आपे सही कीधु एने साथे आपण देखो हो कि आ गर्मी नो जो

0: बर्बाद तक हाँ से उदी खेत्र में काम करे है, धूप में फसल ने देखभाल सिंचाई करवो कटाई करवो निराई गुड़ाई करवो ये पशुओं ने देखभाल जेवा काम ही लगातार करते रहे हैं। एवं में एना नो शरीर जे है ई लगातार गर्मी सहन करे है। कई वक्त आपने देखो हो के आपने जे भाई बोन है ये टाइम माते पानी नहीं पीता मातु नटी ढकतो ने आराम भी नहीं करता ने कुछ भाई बोन है ये विचार करे है कि आपने तो रोज ताप में रहो आपने हो थाका आज चीजें आपने लापरवाही नु कारण बनी सके। अगाड़ी आपने कार्यक्रम में जानेंगे आपने भाई बोन ने बताड़ेंगे कि हर ते आपने टाइम रहते और ये सब चीजें तक की बचाव करवो जरूरी है वो एवं परंपरागत उपाय है जे आपड़े बल्ले फायदेमंद थी सके। तो वाते तो आपड़े भाई बहनों ते की करंगा पर मारू मन थी रू है कि केम ने आपड़े भाई बहनों ने आपड़े गीत हमरा विदा
1: होवे अंजलि बोन तो भाई बहनों हमड़ा गीत

0: उस गीत हाथे हमें कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़ा सूट आशा कर रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में हमारी अब तक जीव भी बातें रही है या आपने गमी होगा तो आपने हमारो आज नुआ कार्यक्रम क्यों लग्यू एने बारा में आप राय सूझो मनाली शको अमारे अणप पता मारते
1: होवे भाइयों बहनों अमारू पतु है कार्यक्रम खेतीवाड़ी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान अमारू पिन कोड नंबर है 327001 अजी वधारे जानकारी बलदे आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते अमारू फोन नंबर है 9460051234
0: तो भाइयों बहनों फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नवीशने हाते तारुदी
1: राम राम।

0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हमारे समय की अनिवार्य आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: आज की तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां तकनीक औद्योगिकरण और बाजारवाद का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है अंजलि, वहीं हमारी संस्कृति और परंपराएं धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे समय में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा बहुत जरूरी हो जाती है। ये केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं है श्रोताओं, बल्कि हमारी

0: करने का भी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यही वह जगह है जहां सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये केवल कला, परंपरा और संस्कृति का संरक्षण नहीं करती, बल्कि इन्हें आर्थिक शक्ति में बदलकर समाज और देश के विकास में योगदान देती है। कहना चाहेंगे श्रोता।

0: जीवन शैली पर आधारित होती है, जैसे कि लोक कला और हस्तशिल्प, जैसे मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, कपड़े, ये सभी पारंपरिक संगीत, नृत्य, स्थानीय भोजन, खान पान और सांस्कृतिक पर्यटन, ये सभी हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। आज के समय में इनकी आवश्यकता और ज्यादा हो गई है, क्योंकि श्रोता साथियों, रोजगार के नए अवसर यानी कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुलती है।
1: बिल्कुल,
0: कारीगर, कला

0: कि संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। ये हमारी भाषा, कला, परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली का समग्र रूप है।
1: बिल्कुल।
0: जब यही संस्कृति आर्थिक गतिविधियों से जुड़ती है तो वो संस्कृति अर्थव्यवस्था का रूप लेती है। आज के समय में जब वैश्विक

0: बाजार उपलब्ध कराते हैं तो कलाकारों को सम्मान और आर्थिक स्थिरता दोनों मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से कि तेजी से बदलती दुनिया में हमारी कई परंपराएं खत्म होने की कगार पर हैं। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, जैसा कि जागृति जी आपने कहा कि उन्हें जीवित रखने का माध्यम

रहे हैं, बल्कि नए अवसरों की तलाश में भी है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था उन्हें स्टार्टअप डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और सांस्कृतिक उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देती है। श्रोताओं, आज हम देख रहे हैं कि युवा अपनी जड़ों से जुड़कर

सच होता साथियों, केवल अतीत की विरासत नहीं है बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। यह हमें बताती है जागृति जी कि विकास का रास्ता केवल मशीनों फैक्ट्रियों से नहीं है बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ भी बनता है।

0: कड़ी है। जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, किस तरह सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हमारे समय की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है को लेकर ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: धार्मिक नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, परंपराओं और सामाजिक जुड़ाव से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपनी संस्कृति को आर्थिक शक्ति में बदलते हैं, तो हम एक ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जागृति जी, जो आत्मसम्मान, रोजगार और सामाजिक संतुलन तीनों को साथ लेकर चलता है।
1: बिल्कुल,
0: आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जड़ों को बोझ नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखें। यदि सही दिशा, सहयोग और जागरूकता मिले तो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था न केवल स्थानीय स्तर पर बदलाव ला सकती है, बल्कि श्रोता साथियों, देश को वैश्विक मंच और एक अलग पहचान भी दिला सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन भी है। जब लोग किसी स्थान की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को देखने जाते हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि राजस्थान की लोक संस्कृति, बनारस की गंगा आरती या दक्षिण भारत के मंदिर, ये सभी सांस्कृतिक पर्यटन के उदाहरण है जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको चुनौतियों के बारे में भी गीत से पहले अवगत करवाया था, यही आपको समाधान और सुझाव के बारे में बताएं, तो स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे देनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाना चाहिए अंजलि। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में संस्कृति के महत्व को सिखाया जाना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: सरकार द्वारा योजना और नीतियों को मजबूत करना होगा। श्रोताओं, आपसे यही कहना चाहेंगे कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे समय की जरूरत है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और साथ ही आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
0: जी हाँ,
1: अगर हम अपनी संस्कृति को बचाते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बना सके, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक

0: सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यह हमें सिखाती है कि प्रगति का अर्थ अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं बल्कि उन्हें नए रूप में अपनाना है। यह केवल आर्थिक लाभ का साधन नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है। यदि समाज, सरकार और युवा मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो यह क्षेत्र आने वाले समय में सबसे सशक्त विकास मॉडल बन सकता है। छोटे छोटे प्रयास जैसे कि स्थानीय उत्पाद को अपनाना, पारंपरिक कौशल को सीखना और बढ़ावा देना धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन की नींव रखता है। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हमें यह रास्ता दिलाती है कि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें हमारी परंपराएं जीवित रहें, लोग आत्मनिर्भर बने, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। यही वह दिशा है दोस्तों जो आज की जरूरत भी है और भविष्य की मजबूती भी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था कोई पुरानी सोच नहीं है बल्कि भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। यह हमें सिखाती है कि विकास केवल इमारतों और मशीनों से नहीं होता बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करने से भी होता है। अगर हम अपनी संस्कृति को भूलकर केवल आधुनिकता के पीछे भागेंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन अगर हम अपनी परंपराओं को अपनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे तो हम न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि

0: और अपनी विरासत को केवल यादों में नहीं बल्कि बाजार और भविष्य में स्थान देने की। क्योंकि याद रखिए श्रोताओं, जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही समय की आंधियों में मजबूती से खड़ा रहता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि अपनी संस्कृति को हमें बचाना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी ताकत बनाना है। यही हमारे समय की सच्ची जरूरत है और यही हमारे उज्जवल भविष्य की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, हमें आगे बढ़ते

0: तभी हम एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जहां विकास के साथ साथ हमारी पहचान भी सुरक्षित और मजबूत बनी रहे, और यही सच्चे अर्थों में समृद्ध समाज की पहचान होगी।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि परेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वॉगर रेडियो 90.8 FM पर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। श्रोता साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल बहुत जरूरी हो गया है, वो क्या है ये मैं आपको बताऊं तो क्या हम काम, परिवार और खुद इन तीनों को बराबर समय दे पा रहे हैं? हम देखते हैं कि कई लोग काम में इतने उलझ जाते हैं कि परिवार पीछे छूट जाता है। कुछ लोग परिवार की जिम्मेदारी में खुद को भूल जाते हैं, और कई बार सबसे ज्यादा अनदेखी खुद की होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि जिंदगी में संतुलन कैसे बनाया जाए। बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान।

साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि क्या हम काम, परिवार और खुद इन तीनों में बराबर संतुलन दे पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग परिवार को समय देते हैं तो काम छूट जाता है, काम को समय देते हैं तो परिवार छूट जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों ही चीजों को समय देते देते इंसान खुद को भूल जाता है। तो आज कार्यक्रम में हम जानते हैं कि हम जिंदगी में संतुलन को कैसे बनाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना संतुलन के जीवन बोझ लगने लगता है। अगर सिर्फ काम होगा तो थकान बढ़ने लग जाएगी, और अगर सिर्फ जिम्मेदारियां होंगी तो मन दबाव में रहेगा, और अगर खुद के लिए समय नहीं होगा तो खुशी और शांति दोनों ही कम होने लगेगी। इसलिए दोस्तों, संतुलन जीवन को आसान नहीं बनाता, लेकिन उसे बिखरने से जरूर बचाता है। हर काम जरूरी है, लेकिन हर काम एक साथ जरूरी नहीं। जरा सोचिए श्रोता साथियों, आज सबसे जरूरी क्या है, परिवार, काम या खुद के लिए थोड़ा समय? जो जरूरी है पहले उसे आपको जगह देनी है, यानी कि हमें यह समझना होगा कि तीनों में से हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो हमें प्राथमिकताएं तय करनी है। उसके बाद श्रोता साथियों बात आती है समय का छोटा बंटवारा करने की, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए संतुलन हमेशा बड़े बदलाव से नहीं आता, छोटी आदतों से आता है। दिन में 20 मिनट परिवार के साथ हमें समय बिताना है, 15 मिनट सिर्फ अपने लिए हमें देना है, और काम के बाद थोड़ी मानसिक दूरी, यानी कि छोटे समय का सही उपयोग बड़ा असर लाता है। श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि कई बार हम घर पर होते हैं पर मन कहीं और होता है। श्रोता साथियों सिर्फ साथ बैठना ही साथ होना नहीं है, बात करना, सुनना, जुड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि परिवार को हमेशा ज्यादा समय नहीं सही समय चाहिए होता है। कहना चाहूंगी दोस्तों कि खुद के लिए समय निकालना कोई स्वार्थ की बात नहीं होती है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, पहले सबका ध्यान रखूं फिर अपना, लेकिन साथियों अगर आप खुद ही थक जाएंगे तो दूसरों को कैसे संभालेंगे। थोड़ा आराम कीजिए, थोड़े अपने शौक पूरे कीजिए और थोड़े अकेले समय बिताइए, क्योंकि ये जरूरी है, विलासिता नहीं। इसी के साथ हमें अपने जीवन में ना कहना भी सीखना होगा, क्योंकि हर जिम्मेदारी उठाना जरूरी नहीं है, हर उम्मीद पूरी करना भी जरूरी नहीं है। जहाँ जरूरत हो श्रोता साथियों सम्मान के साथ ना कहें, यही संतुलन बचाता है। कहना चाहूंगी दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को कि दूसरों की जिंदगी देखकर अपने संतुलन का फैसला मत कीजिए। हर घर अलग होता है, हर परिस्थिति अलग है, अपनी जरूरत के हिसाब से हमें तालमेल बनाना है। संतुलन समय मिलने से नहीं दोस्तों, समय निकालने से बनता है। जो खुद को समय देता है वही दूसरों को भी बेहतर दे पाता है। इसलिए दोस्तों काम जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन खुद भी जरूरी है। जिंदगी में संतुलन कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है साथियों। यदि रोज की छोटी समझ, छोटे फैसलों और सही प्राथमिकताओं से इसे बनाया जा सकता है। काम, परिवार और खुद, इनमें से किसी एक को चुनना समाधान नहीं है, इन तीनों के बीच तालमेल बनाना ही असली समझदारी है। तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है कि इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना क्यों जरूरी है और कैसे हम बना सकते हैं, तो ये बातें मैं आगे अवश्य करूंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि इससे पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान ही लिया कि किस तरीके से जिंदगी में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, यही दोस्तों आपको कहना चाहूंगी कि संतुलन का मतलब सबको बराबर समय देना नहीं बल्कि सही समय पर सही ध्यान देना है। आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले शब्द हैं व्यस्तता, दबाव और जिम्मेदारी और समय की कमी। लोग सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं, समाज की अपेक्षाएं निभाते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है कि क्या इन सब के बीच जीवन संतुलित है? क्या हम काम, परिवार और खुद इन तीनों को सही जगह दे पा रहे हैं? दोस्तों, कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से हर काम जरूरी लग सकता है पर हर काम समान जरूरी नहीं होता। प्राथमिकताएं तय करना संतुलन का पहला कदम है। हमें खुद से पूछना है कि अभी सबसे जरूरी क्या है। क्या मैं हर जरूरी चीज खुद ही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? क्या कुछ चीजें टाली या बांटी जा सकती है? प्राथमिकताएं तय करने से ऊर्जा बिखरती नहीं है दोस्तों, केंद्रित होती है। ध्यान रखें, व्यस्त होना, उपयोगी होना दोनों अलग बातें होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि काम जरूरी है, सम्मान देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन दोस्तों जब काम ही पूरी पहचान बन जाए तब समस्या शुरू होती है। इसलिए काम का एक तय अंत समय रखें। हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं। घर को हमेशा कार्यस्थल न बनने दें। घर लौटते ही 10 मिनट हमें खुद को देना है। हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम हमारी सोच को नियंत्रित रख सकते हैं और तीनों के बीच में संतुलन बना सकते हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि बहुत सी बार महिलाओं पर दोहरा तीहरा बोझ होता है, काम, घर और देखभाल का। इसलिए संतुलन की चर्चा में यह जरूरी है कि सहयोग की संस्कृति बने, श्रम की साझेदारी हो, महिलाओं का निजी समय सम्मान पाए। संतुलन व्यक्तिगत नहीं सामाजिक प्रश्न भी हो। बहुत लोग सोचते हैं कि संतुलन का मतलब सब कुछ आदर्श। ऐसा नहीं है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी परिवार, कभी खुद को ज्यादा समय चाहिए होगा। संतुलन स्थिर तस्वीर नहीं, बदलता हुआ तालमेल है। इसलिए संतुलन जड़ नहीं, जीवित प्रक्रिया है। जिंदगी में संतुलन बनाना कोई एक तकनीक नहीं है दोस्तों, एक दृष्टिकोण है। यह समझ से बनता है, तुलना छोड़ने से बनता है, सीमाएं तय करने से बनता है और खुद को महत्व देने से बनता है। काम जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वह आधार देता है। परिवार जरूरी है, क्योंकि वह संबंध देता है। खुद जरूरी है, क्योंकि वही केंद्र है। अगर केंद्र ही थक जाए तो बाकी सब धीरे धीरे प्रभावित होगा। इसलिए संतुलन का मतलब जीवन को इस तरह जीना कि उपलब्धि भी हो, अपनापन भी हो और भीतर शांति भी हो। संतुलन समय मिलने से नहीं, समझ बनने से आता है। काम जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। परिवार को उपस्थिति चाहिए, सिर्फ उपलब्धता नहीं। खुद का ध्यान रखना जिम्मेदारी है, कोई स्वार्थ नहीं। और जहां संतुलन है वही टिकाऊ खुशी है। तो श्रोता साथियों, इस तरीके से कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पाए कि हम काम, परिवार और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाएं, क्योंकि अक्सर बहुत सी बार इन सारी चीजों को लेकर घर परिवार के लोग, दोस्त लोग और हम खुद एक दूसरे से सवाल करते रहते हैं और कहते रहते हैं, क्या हमारे पास हमारे लिए समय नहीं है? परिवार वाले बोलते हैं, आपके पास हमारे लिए समय नहीं है। और काम हमारा जो है वो भी हमसे कभी कभी सवाल करने लग जाता है कि काम के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे में हमें इन सारी चीजों में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम खुद के लिए जरूरी हैं, हमारे साथ हमारा परिवार और काम भी हमारे लिए जरूरी है। और तीनों में बनाया गया संतुलन हमारे जीवन की खुशहाली की नींव है। इसलिए आप समय सीमा तय करते हुए, प्राथमिकताएं तय करते हुए अपने जीवन में इन सारी चीजों का संतुलन बनाकर रखें, ताकि आपका जो जीवन है वो हमेशा खुशी से भरा रहे। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मेरी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नए नए प्रेरणादायक विषयों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो, पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भेंडा तुरिये आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जीए डीले आवे जोर।
4: सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसवे महीने बाल ने आ खवानो आल।
3: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।
5: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
6: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
5: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
6: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।